एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज रविवार है। शक सवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तक

अनुसार 10 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आस्था के स्वर कार्यक्रम।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए आप सुनिए चित्रा सिंह के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम आप संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख रमाकांत पांडे का है।
3: आत्मज्ञान, स्वयं को जान लेना ही समस्त संसार के मानव जीव चराचर प्राणी को जानना है। हम अपना पराया मोह माया में लिप्त हैं, यही संसार की संरचना व मानव जीवन का मुख्य आधार है। प्रत्येक मनुष्य में इसी प्रकार के विचारों का संचार होता है, परंतु इससे अलग यह है कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं। कहने का आशय यह है कि दूसरों से अपेक्षा करते हैं, क्या वे भी स्वयं दूसरों के दुख

0: सुख और निरंतर उनके विचारों से जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा दुख ही हमें अति भारी लगता है, हमारी परेशानी हमें अति विचलित कर देती है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी ऐसी ही समस्या हो सकती है। इसे जान लेना ही संसार को समझने जैसा है। हमारे अंदर विचारों का समंदर है, वही विचार भिन्नता लिए हुए अनेक लोगों में अपने अनुभव के आधार पर विद्यमान हो। स्वयं के प्रति हम आच्छादित अनुभूति चाहते हैं, दूसरों से दया, समर्पण, त्याग, भाव, प्रेम, मित्रता चाहते हैं। वहीं हमारे अपने व मानव जीव प्राणी मात्र में यह भाव अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हम अपने विचार अनुरूप किसी को नहीं पाते तो दूरी बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं, हमारे विचार पर हमारा अधिकार है। दूसरे के विचार पर व स्वभाव पर कदापि हमारा विचार नहीं हो सकता। समदर्शी रहें तो कह सकते हैं कि स्वयं को जान लेना ही संसार को समझना है। जैसे हम अपने लिए हर सुख, आनंद, मान, प्रतिष्ठा चाहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मानव यह चाहता है। अतः उसकी भावनाओं को समझ लेना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सनातन धर्म एवं शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार आत्मज्ञान होना संभव है। व्यक्ति संसार जगत की कामनाओं में लिप्त है, मोहमाया में फंसा हुआ है, सारा जीवन अपनी कामनाओं में लगा देता है और अंत में उसे इस संसार को छोड़कर जाना होता है। मोक्ष की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना। तो ये मुक्ति क्या है? मुक्ति के विषय में मानव जीवन में अनेक भ्रांतियां हैं, जबकि शास्त्रों में गीता को अच्छे से समझ लेना मुक्ति का मार्ग है। गीता को सही तरह से पढ़कर मंथन किया जाए तो मोक्ष का मार्ग स्वतः ही मानव के ज्ञान में आ जाएगा। सारा जीवन अपनी कठिनाई और जीवन यापन के साधन में खर्च होता है। मानव अपने स्वयं के लिए बहुत कम समय निकाल पाता है। परमात्मा ने हमारी संरचना ही इस प्रकार की है कि हमें आत्मज्ञान हो सकता है, परंतु आवश्यकता है एक योग्य गुरु की, जो स्वयं उस पथ पर चलकर आपको भी उस मार्ग पर पहुंचा जाए। सनातन धर्म में आत्मज्ञान के लिए गुरु का बहुत महत्व है। गुरु का सानिध्य होने से साधक कभी भटकता नहीं। आत्मज्ञान के मार्ग पर बाधाओं का अंबार लगा हुआ है। मानव आत्मज्ञान का अर्थ अनेक लोग शास्त्र अनुसार पढ़कर कह तो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी होना अलग विषय है। सांसारिक मनुष्य द्वैत भाव में जी रहा है, वह स्वयं में दो है, उसका उसको ज्ञान ही नहीं। प्रकृति परमात्मा, प्रकृति का अर्थ है वह पांच तत्वों से है, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। शास्त्रों में अनेक नाम व संज्ञाएं दी हुई हैं। जीव शिव की यात्रा आत्मज्ञान से ही संभव है। स्वयं को स्वयं का ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए आज की कृषि चर्चा।
1: भाई बहन नोहनी राम राम। आज की कृषि चर्चा में हम आपको जानकारी देवांगा फल बाग बगीचा लगाने की तैयारी विषय पर। आप भी आम अमरूद अनार संतरा सीताफल जैसा फल का बाग लगाने की तैयारी करी राज, तो आप शुरू में कुछ बात को ध्यान रखी कर अच्छो उत्पादन प्राप्त करी सको। पहले हम बात करांगा फल का बाग लगाने की योजना पर। तर फल का पेड़ लंबा समय कालेण हो, बाग इना प्रकार सी लगावा जेका सी उनका से फायदो लंबा समय तक मिलतो रहे, देखभाल में खर्चो कम लगा न पेड़ भी स्वस्थ रहे, बाग में मौजूद साधन को पूरा उपयोग भी हम प्राप्त करी सका। बाग की योजना इना प्रकार सी होनी चाहिए कि फल वाला पेड़ न ख फैलना का लेन सही जगह मिली सका, सभी पेड़ न तक सभी सुविधा न आसानी से पहुँची सका। फल न का उत्पादन का लेन मिट्टी सिंचाई न जलवायु पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाग बगीचा में काम करना

0: बड़ा भाई भी जानकारी रखे, इन्हीं बात को भी ध्यान रखा। जहाँ तक किशन रवि नोनी भूमि का चयन की बात आवे तो बगीचा में नया पौधा लगावना का पहला मिट्टी की जांच जरूर करवाई लेवा। फल का बगीचा का लेन गहरी दोमट मिट्टी अच्छी रहे। जमीन में अधिक गहराई तक कोई सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद भी होनी चाहिए। पानी की निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करें पौधा का चयन का बारे में। बाग में पौधा न की किस्म न को विशेष रूप से ध्यान रखा और चयन करते समय विशेष रूप से सावधानी रखा। पौधा न की किस्म को चयन हमेशा अपना क्षेत्र का हिसाब से करना चाहिए। अनार, आम, पपीता, आंवला, नींबू, संतरा, सीताफल, अमरूद, मौसम्बी जैसा फल न को उत्पादन हम आसानी से ले सकें। अधिक नमी वाला स्थान पर मौसम्बी न संतरा नहीं लगाना चाहिए। गर्म न ठंडी हवा और असामयिक प्राकृतिक आपदा से बचने का लेन खेत का चारों ओर देशी आम, जामुन, देशी आवलो जैसा फल न का पेड़ लगाना चाहिए। न इनका सी कुछ आमदनी भी होएगा, न खेत गर्म न ठंडी हवा न सी बचेल भी रहेगा। बगीचा कम क्षेत्र में यदि छे तो उत्तर न पश्चिम दिशा में हम एक से दुई लाइन में इन्हीं बात को हम ध्यान रखा कि पेड़ वृक्ष न की जड़ बगीचा में जाकर पोषक तत्व ले उपज में कमी आवे। तो एक कारण जरूरी छे कि बगीचा न बाड़ का बीच में 3 साल में कम से कम एक बार 3 फुट गहरी खाई खोदी कर जड़ न का हम काटी देवा। बगीचा लगाने से पहले सिंचाई जरूरी छे। पानी की कमी छे तो बूंद बूंद सिंचाई विधि को उपयोग करनी चाहिए। जे काम पानी न मेहनत दोए न की बचत होए, पौधा न का जरूरत का हिसाब से पानी मिले जिका से पैदावार में बढ़ोतरी होए। पौधा न की कतार सी सीधा सिंचाई करने से पौधा न में रोग फैलना की संभावना बढ़ी जाए। जी नाड़ी का पहला वाला जी पौधा छे वो कमजोर भी हो जाए। तो हम जरूर ध्यान रखें कि बूंद बूंद सिंचाई विधि को हम उपयोग करा। फल पेड़ की सही दूरी को रेखांकन भी भाई बहन होनी जरूरी छे। बगीचा हम लगे रहा तो बगीचा वर्गाकार विधि से यदि हम लगावांगा तो ये आसान भी रहेगा और इन्हीं विधि से हमका सभी काम करने में भी आसानी रहेगा। मई जून माह में हम गड्ढा खोदी कर 20 से 25 दिन तक गड्ढा खुला छोड़ देना चाहिए जिका से तेज घाम से कीटाणु खत्म हो जाएगा। गड्ढा खोदता समय ऊपर की आधी उपजाऊ मिट्टी एक तरफ रखी देनी चाहिए न आधी मिट्टी दूसरी तरफ डालनी चाहिए। गड्ढा न की खुदाई का 1 महीना बाद गड्ढा नमक गोबर की सड़ेल खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, नीम की कली 2 किलो, छारी जमीन यदि छे तो 250 ग्राम जिप्सन गड्ढा की मिट्टी में डालकर भरी देनी चाहिए। मिलावना का बाद खेत की ऊपरी मिट्टी में हम मिलावनी चाहिए। बरसात शुरू होने का पहला मिश्रण का गड्ढा का खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाई कर भरी देनी चाहिए। न पानी डाली देनी चाहिए जेका से मिट्टी अच्छी प्रकार से नीचे बैठी जाए। पौधा ने की रोपाई जहाँ तक हुई सका 2 से 3 बार अच्छी बारिश होने का बाद हमका पौधा ने की रोपाई गड्ढा नम करनी चाहिए। शासकीय न अच्छी नर्सरी से लाया गया पौधा न का तैयार गड्ढा नम रोपी देनी चाहिए। भाई रोपाई जुलाई अगस्त का महीना में करनी चाहिए। सावधानी से पौधा लगाई कर जरूरत का अनुसार पानी देनी चाहिए। शुरू का 2 महीना तक पौधा न का पानी की जरूरत का अनुसार उनका पानी 2 से 3 दिन का अंतराल से देना चाहिए। और भविष्य होनी अलग अलग पौधा न की फल देना को समय न कितना समय तक वो फल देगा ये सभी बात न किस्म न पर निर्भर करे। तो आज आपसी ईज कहना चाहिए।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा, वाचक स्वर अखिलेश परोले का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इस सभा में अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए हमारा साप्ताहिक क्रम हमारे श्रोता। इसमें आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी श्रोता रश्मि गुप्ता से। 7:20 पर शास्त्रीय संगीत, इसमें आज सुनिए शोभा गुर्टू का गायन। 7:30 पर सुनिए कस्टमाइज स्पॉन्सर कार्यक्रम एक मुलाकात, इसमें डॉक्टर सीमा सूटे से सुनिए मोना तफ्तरी की बातचीत। 8:15 पर सुगम संगीत। 8:30 आपके मीत ये गीत कार्यक्रम और 9 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर हमारा साप्ताहिक क्रम फोन करें गीत सुने प्रस्तुति मनीष कुलकर्णी की। 10:35 पर बाल जगत, इसमें होगी कहानी सच्ची सीख के साथी, साथी होगा फिल्म संगीत। 11 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर निमाड़ी लोकगीत। 6 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज का क्रम है हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम और 8:15 पर समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की हम प्रसारित करेंगे। 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और 9:30 से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की पहली खबर है, जिला अस्पताल के SNCU में अब प्री मैच्योर और कम वजन के बच्चों को भी मां का दूध पीने को मिलेगा। इसके लिए अस्पताल में मदर मिल्क बैंक शुरू होगा। मिल्क बैंक के लिए शासन से उपकरण आ रहे हैं, जल्द ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। अगली खबर है, साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत में बकायेदारों को अधिभार में छूट दी तो एक ही दिन में 67 लाख रुपए बकाया टैक्स लोगों ने शनिवार को जमा किया। इस बार निगम ने अधिभार में छूट के साथ ही इस वित्तीय वर्ष एडवांस एकमुश्त राशि जमा करने पर संपत्ति कर में 5% की छूट भी दी। यह छूट 30 जून तक दी जाएगी।

अगली खबर है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व प्रसव पूर्ण देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए। इनमें स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने 513 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की जांच कर उपचार व परामर्श दिया।

अगली खबर है, शहर में महाराणा प्रताप की जयंती शनिवार को मनाई गई। टैगोर पार्क स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर नगर निगम सहित राजपूत समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

अगली खबर है 11 केवी वृंदावन फीडर पर रविवार मेंटेनेंस होगा, जिसके कारण सुबह 7 से 11 बजे तक पुखराज कॉलोनी, तुलसी विहार, रमा कॉलोनी, साई मंदिर के आसपास, बादशाह नगर, लाल चौकी के क्षेत्रों में बिजली प्रदाय बंद रहेगा। अब खबरें खेल जगत से। तीरंदाजी विश्व कप में भारत के साहिल जाधव ने कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। साहिल का यह पहला विश्व कप पदक है। प्ले ऑफ मुकाबले में उन्होंने डेनमार्क के मार्टिन जेम्सबोस को 147-144 से हराया। अगली खबर है आईपीएल 19 में जयपुर के घरेलू सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटन्स ने 77 रन से हराया।

0: रखे। प्ले ऑफ मुकाबले में उन्होंने डेनमार्क के मार्टिन जेम सबोस को 147-144 से हराया। अगली खबर है, आईपीएल 19 में जयपुर के घरेलू सवाई मानसी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस ने 77 रन से हराया। अब जानकारी मौसम की। शुक्रवार शनिवार रात जिले के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। कल दिन का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज की ताजा खबर का संकलन सोनाली दशोरे का।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने को हैं। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक क्रम हमारे श्रोता। इसमें आज हमारी श्रोता हैं सनावत से रश्मि गुप्ता। उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हमारे श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है हमारी नियमित श्रोता रश्मि गुप्ता जी। श्रोताओं, ये हमारी एक ऐसी श्रोता हैं जो कभी पत्र नहीं लिखती, कोई ईमेल नहीं करती, लेकिन हमारे कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो रश्मि जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: रश्मि जी, क्या करती हैं सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए।
3: मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में ही मैं बच्चों का घर पे ही कोचिंग लेती हूँ, और साथ में मैं रेडियो बहुत अच्छे से सुनती हूँ।
2: अच्छा।
3: सारे कार्यक्रम सुनती हूँ आपके।
2: हाँ हाँ हाँ। आप कार्यक्रम कब कब सुनते हैं और कौन कौन सी सुनती हैं?
3: मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम पूरे सुनती हूँ। सुबह सुबह सारे काम रहते हैं, किचन में भी काम रहते हैं, तो मैं मतलब मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सबसे पहले जाके रेडियो ऑन करती हूँ, फिर ही मेरा मतलब रोज़ का काम शुरू होता है। उसके बाद शाम को भी मैं सुनती हूँ, क्योंकि दोपहर में कोचिंग वगैरह रहती है, शाम को फिर किचन का टाइम होता है, तो उस टाइम मेरा 6 बजे चालू हो ही जाता है रेडियो, तो 6 से 8 बजे तक सारे कार्यक्रम सुनती हूँ। और ज़्यादातर मुझे विशेष कार्यक्रम पसंद आता है जो सुबह से प्रसारित होता है।
2: हाँ।
3: और साथ में युवानी कार्यक्रम भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है युवानी कार्यक्रम में जो भी चीज़ें यूथ से रिलेटेड होती है, युवाओं के लिए बताई हाँ। जाती है, तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। और वो चीज़ें का मतलब हमारे बच्चों के लिए भी, बच्चे भी सुनते हैं आते जाते, तो उनके लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें रहती है।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: बाकी फिल्म और संगीत वो तो हम सुनते ही रहते हैं, वो तो सब अच्छे ही रहते
2: हाँ,
3: हैं।
2: हाँ, हाँ।
3: पर मोस्टली विशेष कार्यक्रम और युवानी मुझे बहुत पसंद आता है।
2: हाँ हाँ। आपने फिल्म संगीत की बात की, जहाँ तक है तो आप फिल्म संगीत में नए गाने सुनना पसंद करते हैं या पुराने गाने पसंद करते हैं, ऐसे कोई विशेष चॉइस आपकी रहती है?
3: मुझे ज़्यादातर पुराने गाने पसंद आते हैं।
2: हाँ, हाँ।
3: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गानों में जो मीनिंग रहता है,
2: हाँ,
3: जो संगीत है, वो एक्चुअल मतलब संगीत का मतलब हमें समझ आता है उसमें।
2: हाँ,
3: नए गाने में कुछ गाने

0: बहुत अच्छे बन रहे हैं आजकल, तो
1: हाँ
0: वो भी मैं सुनती रहती हूँ, मतलब मैं अपडेटेड रहती हूँ नए गानों से भी, पर ज्यादातर मैं पुराने गाने गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे खुद गाने का शौक है,
1: अच्छा
0: तो मेरा रेडियो चलता रहता है और मैं गाने सुनना पसंद करती
1: हाँ
0: हूँ।
1: हाँ आपकी पसंदीदा कलाकार कौन है जिसके गाने आप विशेष तौर पर सुनती है? जैसे मोस्टली ये रहता है लता मंगेशकर हुआ, मोहम्मद रफ़ी हुआ, किशोर कुमार हुआ, तो आपके पसंदीदा कलाकार कौन है?
0: हाँ, ज्यादातर लता मंगेशकर, आशा भोसले, इनके
1: ओके
0: गाने मैं सुनती रहती हूँ। किशोर कुमार के बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सुनती
1: हाँ
0: हूँ। अभी नए कलाकारों में अरिजीत सिंह,
1: हाँ
0: श्रेया घोषाल,
1: अच्छा
0: सुनिधि चौहान, इन
1: हाँ
0: सबके, मोहित चौहान, इन सबके गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं,
1: हाँ हाँ
0: जो मैं सुनना पसंद करती हूँ।
1: आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन सुनता है कार्यक्रम?
0: ज्यादातर मैं ही सुनती हूँ, क्योंकि मेरा काम के साथ में चलता रहता है रेडियो। बाकी जो लोग आते जाते रहते हैं, खाना खाते टाइम निकलते हैं, तो वो सुनते रहते हैं, और उन्हें भी जानकारी रहती है कि अभी ये कार्यक्रम चल रहा है रेडियो पे, या ये चीज़ आज अच्छी बताई है। तो रात में जब डिस्कस करते हैं, तो वो जो भी कार्यक्रम सुना दिन में, उसका भी डिस्कशन होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुनती हूँ तो
1: हाँ
0: बाकी सब भी इंटरेस्ट ले रहे
1: इंटरेस्ट ले
0: हैं।
1: रहे हैं। तो जैसे आपने मुझे कहा कि आपको युववाणी कार्यक्रम सुनना पसंद है और आप कोचिंग भी लेती हैं, तो युववाणी में कुछ जानकारियाँ जैसे दी जाती है, तो वो आप अपने बच्चों से, कोचिंग वाले बच्चों से शेयर करना पसंद करती हैं कि आज ये जानकारी दी गई तो उनका नॉलेज भी बढ़े?
0: हाँ बिल्कुल, मैं जो मुझे लगता है कि आज इनको ये चीज़ बताना चाहिए, या फिर आज बहुत अच्छी चीज़ कुछ रेडियो पे आई है उससे रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल उन्हें जानकारी देती हूँ।
1: रश्मि जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि कार्यक्रमों में और सुधार करने की ज़रूरत है या इनफ, इतना सफिशियंट है कार्यक्रम जो प्रसारित हो रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कोचिंग लेती हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों को और हम प्रेरणा दे सकते हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। जैसे युवानी में जो आप बताते हैं, तो
1: हाँ
0: जैसे मेडिकल हमने लाइन पकड़ ली,
1: हाँ
0: तो कोई विशेष जो डॉक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, या फिर जिन्हें अलग अलग फील्ड्स के बारे में उन्हें बता पाए, जैसे बायोलॉजी ले लिया कि डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा MBBS करके, MD करके डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें बहुत अलग अलग फील्ड होती है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, और भी चीज़ें जो बहुत आजकल लोग उसमें जा रहे हैं,
1: हाँ
0: तो उनकी भी जानकारी उन्हें मिल सके, या फिर जो उस चीज़ में बहुत स्पेशलिस्ट है, उनका खुद, उनका आप इंटरव्यू लेके आप बता सकते हैं कि उनका क्या कहना है, ताकि
1: सही,
0: बच्चों को डायरेक्ट उनसे ही
1: कांटेक्ट कर
0: कांटेक्ट
1: सके
0: कर
1: बच्चे
0: सके।
1: उनसे।
0: आजकल हम देखते हैं कि लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, बच्चे
1: हाँ
0: मम्मी पापा काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं, तो अगर रेडियो पे ही हमें सारी जानकारियाँ मिल जाए,
1: बिल्कुल
0: तो स्पेशली ऐसे काउंसलिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और बच्चों को समझ आएगा। इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, आजकल तो बहुत नई नई चीज़ें हैं, फिल्म
1: जी
0: इंडस्ट्री हो गई,
1: जी
0: आजकल बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत कुछ लाइनों में और जाना चाहते
1: जाना
0: हैं,
1: चाहते हैं,
0: तो
1: सही
0: हम
1: बात
0: सबसे
1: है।
0: कांटेक्ट करके और रेडियो पे ही वो चीज़ हम बताएं, तो माँ बाप भी सुनेंगे और साथ में बच्चों को भी वो ज्ञान दे सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: आप ने जो सुझाव दिया वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो हम इस पर अमल ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को इस तरह के सुझावों की ज़रूरत रहती है। अब रश्मि जी, ये बताइए कि क्या आप कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनती हैं या जनरल सनावद में सुनाई देता है ऐसा कुछ?
0: हाँ, जो सनावद में भी बहुत क्लियर प्रसारित होता है रेडियो, तो मुझे ऐसे फ़ोन पे सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं डायरेक्ट रेडियो पे ही सुनती
1: रेडियो
0: हूँ।
1: पर
0: हाँ
1: सुनती हैं, तो आप आकाशवाणी खंडवा की श्रोता हैं, तो इसके अलावा भी आप कहीं के कार्यक्रम सुनती हैं?
0: नहीं, मुझे पसंद आते हैं खंडवा के कार्यक्रम, मैं
1: हाँ
0: अधिकतर वही सुनती हूँ।
1: आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी जैसे दूसरे श्रोताओं के नाम आते हैं तो मैं भी पत्र डालूं या मैं भी मेल करूं तो मेरा भी नाम आए तो मुझे सब लोग जाने? कभी इस बारे में आपने विचार नहीं किया, आप इतना जब कार्यक्रम सुनती हैं तो?
0: नहीं, मुझे मतलब कार्यक्रम सुनना पसंद है, तो मुझे ऐसा स्पेशली नहीं कि मेरा नाम आना चाहिए, मैं सुनती रहती हूँ, मुझे जो जानकारी उससे मिलती है मुझे वो अच्छा लगता है, कि मुझे बैठ के पेपर पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला, तो मुझे बहुत सारी न्यूज़ जो है वो रेडियो के थ्रू मिल जाती है, तो हम बहुत काम करते करते भी ये चीज़ सुन सकते हैं, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है सुनना।
1: जी जी

0: आकाशवाणी से जुड़ी आपकी कोई यादगार स्मृति हो जो आप हमारे और दूसरे श्रोताओं से शेयर करना चाहती हो?
1: मुझे याद है कि बचपन में मेरी मम्मी को बहुत शौक था रेडियो
0: अच्छा,
1: सुनने का।
0: मतलब आपको प्रेरणा आपकी मम्मी से मिली
1: बिल्कुल
0: है, वो
1: बिल्कुल,
0: कैसे?
1: वो उनका भी सुबह मतलब उठते से सबसे पहले रेडियो ऑन होता था, उनके
0: हाँ
1: भी सारे काम रेडियो के साथ ही चलते थे। तो वो सुनते सुनते मुझे भी शौक बना कि यार ऐसा मतलब हमें भी सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब स्कूल के लिए उठती नहीं थी तो मेरी मम्मी रोज सुबह से रामचरितमानस लगा देती थी और वो सुन के मुझे मेरी नींद खुलती थी कि अब उठना ही
0: उठना
1: पड़ेगा।
0: पड़ेगा,
1: तो
0: वो
1: वो एक
0: टाइम का
1: तरह से
0: एक
1: मेरा,
0: अलार्म की तरह
1: हाँ
0: काम करता था
1: एक तरह
0: शरीर।
1: से मेरा अलार्म था वो। तो
0: ओके,
1: मुझे वो मेमोरी है जो स्कूल टाइम की, कि वो मैं सुनती आ रही हूँ तब से।
0: हाँ हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: मेरा आदत में बन गया कि मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ रेडियो सुनना।
0: ओके, तो हम ये समझे कि आपको इसकी प्रेरणा अपनी मम्मी से मिली है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपको बचपन में जब मम्मी सुनती थी तो अच्छा लगता था कि हाँ रेडियो ऐसा सुनना चाहिए?
1: हाँ बचपन में क्या होता था कि अभी इतना हमें पता नहीं था तो कभी कभी चिढ़ भी जाते थे कि क्या मम्मी दिन भर सुनते रहते हो। पर धीरे धीरे वो अपने आप बैक ऑफ दी माइंड वो चलता रहता था कि बातें जो मतलब और ध्यान से सुनने लगे थे तो वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बना रेडियो सुनने का।
0: ओके, हाँ
1: पहले तो ऐसा लगता था कि मम्मी दिन भर
0: हाँ
1: यही
0: रेडियो
1: चलाती
0: चलाते
1: है,
0: रहती है, सही बात है।
1: पर अभी जब हम भी उससे बड़े हो गए हैं और अब जैसे कुछ काम कर रहे हैं, किचन में हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं हो रहा है, हमें जानकारी भी मिलती जा रही है
0: मिलती
1: कुछ ना
0: जा
1: कुछ
0: रही है,
1: उसके थ्रू।
0: सही बात है। हमें आपसे बात करके अच्छा लगा, और हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक क्रम हमारे श्रोता। इसमें आज हमारी श्रोता थी सनावत से रश्मि गुप्ता। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत

0: पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुड्डे बेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
2: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है।

इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज सुनिए शोभा गुर्टू का उपशास्त्रीय गायन दादरा।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कस्टमाइज स्पॉन्सर कार्यक्रम एक मुलाकात। इसमें डॉक्टर सीमा सुटे से बात की है मोना दफ्तरी ने।

0: एक मुलाकात। श्रोताओं, एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सुटे। अब यह विशेष मुलाकात हम आपसे क्यों करवा रहे हैं, ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो हमारे लिए, हमारे जिले के लिए और जिले के साथ साथ हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सुटे। सीमा मैडम, हमारा आकाशवाणी परिवार का, हमारे श्रोताओं का तहे दिल से स्वीकार करें नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। यहाँ आकाशवाणी से जुड़ना मेरे लिए एक भावनात्मक अनुभव रहा है हमेशा, और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ आवाज़ यहाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।
0: जी, सही बात है सीमा जी। और सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि आखिर एक विशेष मुलाकात के लिए, एक मुलाकात के लिए डॉक्टर सीमा सुटे क्यों हमारे बीच में है, यानी आपकी जीवनी के बारे में।
1: देखिए, अभी थोड़े से समय में मैं अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन जैसा अब खंडवा में मैं आई हूँ तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के रूप पर पदस्थ हूँ।
0: तो सीमा जी, यहाँ पर हम अब शुरुआत करते हैं हमारे सफ़र की। जो चंद मिनट हमें आपके साथ गुजारने हैं उसमें सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कहाँ से, आपके से?

0: सिद्धांत, अनुशासन और गहरी नींव आपके जीवन में आई और आज हमारे सामने आदर्श के रूप में है।
1: आदर्श के रूप में आप कह रहे हैं, पर मैं तो अपने आप को बहुत ही साधारण समझती हूँ। मैं जहाँ पैदा हुई थी नागपुर में, मतलब मैं बहुत ही सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ पर मैं करीबन 9 महीने की रही होगी जब मेरे माता पिता के, मतलब पिताजी के ट्रांसफ़र हुई, तो मम्मी को वहाँ उनके साथ जाना पड़ा और मैं दादा दादी के साथ पली बढ़ी। तो वहाँ पर अनुशासन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा मुझ पर। प्यार मोहब्बत तो बहुत कम, बट मुझे अनुशासन में हर चीज़ करना वहाँ सीखने के लिए मिला है, तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन पर ज़्यादा असर डालते हुए मुझे यहाँ तक लेके आया है, तो उसके लिए मैं अपने आप को उनका ऋणी समझती हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, जैसे 7th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ते पढ़ते जो है, मेरी दादी भी मुझे मतलब काम करना सिखाती थी, और मतलब उस समय जो है एक लड़की होने के नाते जो जो सीखना पड़ा मैंने वो सीखा। 7वीं क्लास में जब मैं आई तो मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई थी, जिस समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब पहली बार देख रही हूँ, पर मुझे लगा कि जैसे मैं उनको कितने जन्मों से जानती हूँ। तो उनके साथ हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास होता था, और उसके बाद मतलब जैसे 8वीं 9वीं क्लास हुई और 10वीं क्लास में आते आते मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना एक मुकाम हासिल करना है, और उस समय वो हस्बैंड नहीं थे पर उन्होंने भी कहा कि अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो मैंने 10th और 12th में 1st क्लास 1st उस समय कहते थे तो वो डिवीज़न हासिल किया था, और मेडिकल के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे हम। उस समय हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम पेमेंट सीट पर एडमिशन ले सके, और मेरी सीट एक कुछ नंबरों से उस समय PMT से छूट गई थी, तो सेवाग्राम का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हुए थे जब मेरी बुआ को पता चला। उसके साथ मैं जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने कहा कि अरे एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ 8 दिन बचे हुए, आप एंट्रेंस की तैयारी कब करोगे, कैसे एग्ज़ाम दोगे। मैंने कहा मैं कर लूँगी, और मेरी बुआ ने कहा कि सच में तुम कर लोगे। उन्होंने जिस तरह से उस समय 1000 रुपये फीस थी, पर वो 1000 कैसे इकट्ठा किए, और मैंने फॉर्म भरा और 8 दिन जो है मैं ना सोई, मतलब बिल्कुल कब सोती थी मुझे पता नहीं, पर कंटिन्यूस मैंने पढ़ाई की, और उसमें मैंने जो है वो राष्ट्रीय तौर पर जो है हमारे कैटेगरी में मैंने 3rd नंबर हासिल किया था, और मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद जो बुआ मेरे पढ़ाई पर मेरा ध्यान देती थी, तो उसकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद मुझे ये डर रहा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वो तो बोली थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगी और हमेशा साथ रहूंगी। मैं छोटी थी पर मेरे अंदर हमेशा ये था कि मेरा हाथ हमेशा किसी को देने लायक रहना चाहिए, किसी के सामने फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से ही कुछ इसी तरह से सोचती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जब बुआ की शादी हो जाएगी तो वो उसके मायके की मैं रहूँगी, तो मुझे ये कुछ फिल्मों से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हुआ करती थी मैं उस समय, बहुत फिल्में देखती थी, तो जो फिल्मों में दिखाया जाता था आदर्श बहू आदर्श बेटी कैसे होनी चाहिए, तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि बुआ शादी होके जाएगी तो मेरे लिए खर्चा करेगी, तो उसको घर में कितनी तकलीफ होगी, मैं कैसे उनसे पैसे लूँ। और उस समय फिर मैं हमेशा सोचते रहती थी, पर पढ़ाई में तो मुझे पढ़ाई तो करना था, मुझे डॉक्टर, और बचपन से ही मैं बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है कैसे बनना है मुझे खुद भी नहीं पता था। बट देखिए ऐसा होता है, ऊपर वाले को जब भी अपने को रास्ता दिखाना होता है, रास्ते में कुछ लोग आते हैं मदद करते हैं हमें और हम आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उसकी शादी ज़रूर हुई थी, बट मैं अंदर से ऐसे हो गई थी कि अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊँ, मैं तो फैला नहीं सकती, तो मेरे सामने ये था कि मैं अगर किसी से पैसे लूँगी तो वो मेरे पापा होंगे या मेरे पति होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 7th स्टैंडर्ड से ही मैं उनको जानती थी, उन्होंने कहा था कि मुझसे शादी करोगी, तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे पढ़ा रहे हो तो मैं आपसे शादी करूँगी, तो उन्होंने कहा हाँ, और हमारी शादी हुई, और उसके बाद मेरा मेडिकल में एडमिशन, MBBS, MD, LLB, LLM, MBA, PGDLFM, ये ऐसे बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारी उपलब्धियाँ उनके साथ मैंने हासिल की।
0: तो मैडम अब अपने सफ़र को हम ले चलते हैं गीत संगीत की ओर, और आप, मैं देख रही हूँ कि आप अपने भावनाओं में उस समय में चली गई हैं, तो उस भावना के साथ हम भी आपके साथ सरोबार होना चाहते हैं, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप यहाँ पर?
1: मुझे उस ज़माने में ये गाना बहुत पसंद था, एक तेरा साथ, तो मैं चाहती हूँ कि हम ये गाना सुने।
0: एक तेरा साथ जो हमें दो जहां से प्यारा है, सच में आपका साथ भी हमें दो जहां से प्यारा लग रहा है।

एमबीबीएस में आने से पहले मैं पूरा मराठी मीडियम से पढ़ी थी, और ऐसे सिचुएशन में जब सब कुछ इंग्लिश में होना है तो मुझे तो समझ में आना ज़रूरी था, तो मैंने मराठी टू इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरीज ला के रखी, और जब भी मैं कुछ सीख के आती थी तो पहले सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब हम एमबीबीएस जैसे तैसे, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी और मुझे घर भी संभालना पड़ता था और फिर कॉलेज भी, तो उस दौरान से गुजरते हुए हमने एमबीबीएस कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद मुझे एमडी करना था, तो एमडी के समय मेरे सामने ये था कि मुझे क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए या नॉन क्लिनिकल। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बिजनेसमैन थे, तो मैंने सोचा कि उनके उतार चढ़ाव जो बिजनेसेस में आएंगे उसमें मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने फ्लुएंट परिवार से तो थे नहीं कि हमारे पास मतलब आगे कुछ पैसा हो जो हमें कुछ नहीं भी करूँ तो चलेगा, ऐसा नहीं था। तो मुझे इक्वली उनको सपोर्टिव होना था, तो मैंने कहा कि मेरी सैलरी से घर चलता रहेगा, उनके बिजनेस से जो आएगा वो एक्स्ट्रा रहेगा जो हम कुछ एडिशनल करेंगे। ऐसा सोचते हुए मैंने एक 9-to-5 जॉब वाला सोचा था, बट मुझे कुछ एक्साइटिंग भी करना था क्योंकि एडवेंचरस मेरी अंदर से पर्सनालिटी है, मुझे कुछ भी जब आराम से चलते रहता है तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि दोनों का बीच वाला रास्ता अगर हम देखें तो फोरेंसिक मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लाइव पेशेंट ना सही लेकिन पेशेंट के साथ मेरा कॉन्टैक्ट तो ज़रूर होगा, रिलेटिव्स के साथ कॉन्टैक्ट होगा, पुलिस के साथ होगा, तो वो इंटरेक्टिव रहेगा और मुझे एडवेंचरस लगेगा। ये सोचते हुए मैंने फोरेंसिक मेडिसिन लेने का उस समय सोचा, और किसी के सामने रखा तो उन्होंने बोला कि लड़कियाँ फोरेंसिक थोड़ी लेती है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि लड़कियाँ क्यों नहीं ले सकती, भाई सब कुछ कर सकती है, और मैंने वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। पर इस दौरान इंटर्नशिप में मेरा बेटा आ चुका था और जिसको संभालना भी मेरा फ़र्ज़ था, तो मैं उसको लेके अपने पीजी में ज्वाइन किया था, और दिन में मैं कॉलेज और शाम को उसको संभालती थी, और रात को उसके पापा आते थे जब काम करके मतलब हम लोग साथ हुआ करते थे। तो ऐसे करते हुए हमारा एमडी भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे उस समय याद है कि मैं मतलब जैसे बोलते थे लोग कि ये फीमेल का नहीं है, तो ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सच में अपने आप को साबित करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े थे। सिंपल सी चीज़ जैसे कि फीमेल टॉयलेट, सिंपल सी चीज़ जैसे कि रात को 8 बजे मैं पीएम करने जा रही हूँ तो किसी को मतलब लगता था उनके वो एज अ फ़र्ज़ कि मेरे साथ आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बट हाँ मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ अलग क्यों होता है फीमेल को किसी भी क्षेत्र में, हम सोचते हैं कि इनको अलग से तवज्जो देना चाहिए क्यों। बट जब मैं खुद जब एम्प्लॉयमेंट में आई, मतलब मेरा एमडी ख़त्म होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, तब मैं हमेशा सबको यही बोलती थी कि भले ही हम फीमेल ज़रूर हो लेकिन हमें टक्कर देनी है तो हमें नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो वही सोच मेरी जो है उस समय भी काम आई, और हमेशा जब मैंने हैदराबाद शिफ्ट किया एमडी होने के बाद, मेरा पहला पोस्टिंग तो नागपुर में था, फिर यवतमाल में था, फिर मैंने हैदराबाद 3 साल काम किया, चेन्नई में 3 साल काम किया, कुछ कुछ डेवलपमेंट वाली चीज़ें जो मुझे तुलनात्मक रूप से समझ में आई अलग अलग जगह काम करने से। जब मैं उज्जैन आई तो कुछ कल्चरल के डिफरेंसेस, सनातन परंपरा मुझे दिखाई दी। इंदौर में आई तो खाना पीना बहुत अच्छा, जो हिंदुस्तानी संस्कृति में जो हम वेजिटेरियन खाना इतना अच्छा खा सकते हैं मुझे इंदौर में आके पता चला।

0: और अभी हम जब खंडवा आए हैं तो एक डिफरेंट दृष्टिकोण, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे एक अलग सा महसूस होने लगा है। मतलब जो पहले मैं पूरा करियर ड्रिवन होती थी, मतलब सक्सेस, काम और ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, इस तरह के माहौल में रहती थी, अब जब से मैं खंडवा आई हूँ तो एक अलग ही आभा मंडल यहाँ महसूस हो रहा है। मुझे जो है वो अध्यात्म में ज़्यादा रुचि डेवलप हुई है। मैं जैसे पहले भले ही मैं किसी के ऊपर ऐसे एग्रेसिव होकर डांट नहीं देती थी, पर हाँ मेरे अंदर एग्रेशन था तो मैं लोगों पर गुस्सा बहुत जल्दी कर देती थी। अभी जब से खंडवा आई हूँ, दादाजी की कृपा या पता नहीं ऐसा क्या है इस भूमि पर जिसमें मैं काफ़ी शांत महसूस कर रही हूँ। एक वजह यह भी हो सकती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो एक स्टेबिलिटी है जो दिमाग को शांत रख रही है, बट उसके अलावा यहाँ पर मिले जो लोग हैं बहुत ही सिंपल लाइफ के साथ और सिंपल तत्व के साथ लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं, मुझे ज़्यादा भागदौड़ नहीं दिखती है तो अच्छा लगता है यहाँ पर रहना। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगे कि पॉपुलेशन कम है तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल लेवल तक बहुत अच्छे से पहुँच पा रही है। सामाजिक दृष्टि अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के जो लाभ मिलने हैं वो हर इंडिविजुअल को आराम से मिल रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर जितना मुझे गौरव मिला है, जो एक लग्जरी मिली है, वो आज से पहले शायद कहीं नहीं मिली थी। हालांकि मैं हर जगह पर इससे ज़्यादा कमा रही थी और मुझे काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी मिल रहे थे, पर खंडवा में आके तो बहुत ही अलग महसूस हो रहा
1: जी,
0: है।
1: धन्यवाद मैडम। हमारे खंडवा ज़िले के लिए भी बहुत गौरव है कि आप हमारे ज़िले में रह के हमारे ज़िले को अपनी सेवाएं दे रही हैं। और यहाँ पर जो आपने अपनी बातचीत के दौरान जिक्र किया कि आपने एक नन्ही सी परवरिश और अपनी उम्मीद, अपनी महत्वाकांक्षा का जो है जीवन एक साथ जिया, तो उस नन्ही सी जान के लिए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: मैं अगर उस नन्ही सी जान, मेरा बेटा और दूसरे श्रोतागण जो स्टूडेंट लाइफ में हैं उनके लिए अगर कोई, मतलब मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो है रुक जाना नहीं।
1: जी,
0: बहुत ही मतलब वो प्रेरक गाना है जो मैं हमेशा खुद के लिए भी गाती थी और बच्चों के लिए।
1: कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के,
0: हाँ जी
1: और बिल्कुल वह साए बहार के हमें आपके साथ दिख रहे हैं कि कांटों का सफ़र तय करते हुए आप जिस बहार में हैं और उस बहार में उन फूलों की खुशबू में हम भी आपके साथ महक रहे हैं।

0: अब सीमा जी, यहाँ पर हमें कुछ कुछ जानकारी आपके बारे में यह भी हुई कि आपकी यात्राएं बड़ी ही रोचक रही है और बहुत ही विश्व स्तर पर खतरनाक स्टंट भी आप करती हैं, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं से रूबरू हम आपको करवाना चाहेंगे।
1: स्टंट की अगर बात करें तो पहले बचपन में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे स्टंट करूँगी। हालांकि हाँ, मतलब मैं हमेशा ऊपर नीचे उछल कूद और चंचल मुझे बोलते थे लोग कि हूँ, और जैसे कुछ भी अगर हासिल करना है तो जुगाड़ जमाया, लाइन में सबसे आगे घुस गए अंदर से और वो काम कर लिया, ये तो थोड़ा सा था मेरे अंदर। बट जैसे बुद्धिज़्म के साथ हमें एक और सीख जो इम्पोर्टेंट मिलती थी कि मृत्यु तो निश्चित है, तो आज नहीं तो कल आनी ही है, तो मुझे मृत्यु से कभी भय नहीं रहा। और जिसको मृत्यु से भय नहीं रहता है उसको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से भय नहीं रहता, ऐसा मैं मानती हूँ। तो उस वजह से कभी भी अगर कोई रिस्क हो लेना हो तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। स्कूल लाइफ में मैं जिमनाजियम करती थी और फिर कॉलेज लाइफ में डांस वगैरह में तो पार्टिसिपेट करते ही थे, बट जैसे ही थोड़ी और बड़ी हुई फिर मुझे ऐसा लगा बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन सा लाइफ चल रहा है, कुछ

0: करना चाहिए। फिर हमने जो है फॉरेन टूर जाना चालू किया, और वहाँ पर लोगों को करते हुए देखते हुए ही इच्छा हुई ये करके देखना चाहिए यार, ये हमने नहीं किया। तो ऐसे में हमने स्कूबा डाइविंग की, तो वो समंदर के अंदर जो है मछलियों के साथ, वो जो शैलीय जीव होते हैं उनके साथ जब हम तैरते हैं, तो वो स्कूबा डाइविंग में जो मज़ा आता है वो एकदम गजब का होता है। उसके बाद फिर हम जब स्काई डाइविंग में, जब एरोप्लेन के अंदर जा रहे हैं, और मैं पहले ना सबको डांट देती थी कि क्या है यार, ऊपर से ऐसे कोई कूदता है क्या, अपनी जान कोई प्यारी है या नहीं। पर जब मैं कूदी तो मुझे ऐसा लगा कि सच में पंख निकल आए हो, मतलब पैराशूट था अपने पास, लेकिन वो जो एहसास था कि वो एरोप्लेन से ऐसे जंप लगाना और नीचे से पूरा मतलब वो नीला आसमान और ज़मीन, और वो एक अलग ही अनुभव था। उसके बाद जब हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज है तो पीटर्सबर्ग पे, वहाँ पर उससे बंजी जंपिंग करना, अब जब मैंने दूसरों को करते हुए देखा था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। बट जब मैंने सोचा कि भगवान अगर मुझे ज़िंदा रखना चाहते हैं तो वो किसी भी माध्यम से ज़िंदा रखेंगे, तो वहाँ से कूदने के बाद मुझे दुनिया में अभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वहाँ से जब हम आए तो उसके बाद पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन वगैरह ये सब फिर नॉर्मल से लगने लगे थे। रिवर राफ्टिंग भी किया था, और साउथ अफ्रीका में तो लायन के साथ वॉक एक वहाँ पर एक्टिविटी होती है, जो लायन खुला रहता है और उसके साथ आपको वॉक करना है, तो वो भी मुझे बड़ा मतलब रोमांचक लगा, बहुत ही अच्छा मज़ा आया था उसमें भी। फिर जब मैं वहाँ से आई तो और कुछ करना है और कुछ करना है, क्या करे, तो मिसेस इंडिया जो है वो मेरे लिए एक ऐसा मौका आया कि जिंदगी भर मैं अपने आप को बदसूरत समझती थी, तो मैंने कहा कि स्टेज पर जाकर इस तरह से मॉडल वॉक करना मुझे अच्छा लगता था, कैट वॉक, एक्टिंग, ये तो मुझे बचपन में अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं खुद जाके वहाँ पर कभी मिसेस इंडिया के लिए करूँगी। और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक एडवेंचर है, और मैं गई और मैंने नेशनल स्टेट लेवल पर उसको रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और कुछ जो पल थे वो भी बड़े ही कमाल के पल थे, सच में एडवेंचरस, बहुत ही आग से खेलने वाली बात थी वो मेरे लिए। बाकी लोगों के लिए ये आसान हो सकता है, स्कूबा डाइविंग मुश्किल हो सकता है, पर मेरे लिए स्कूबा डाइविंग से ज़्यादा मुश्किल अपने आप को एज अ मॉडल वहाँ पर प्रेजेंट करना, मेरे लिए वो ज़्यादा एडवेंचरस था। राष्ट्रीय स्तर पर एमपी से जाने वाली मैं थी, और खंडवा से रिप्रेजेंट करने वाली भी मैं पहली थी, तो मैंने जो है एमपी स्टेट को विनर के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था।
1: जी, और अब हम आगे का सफ़र तय करते हैं कि अभी हाल ही में आपने अपने देश का गौरव बढ़ाया है और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी सफलतापूर्वक आयोजित की, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: जब मैं ग्लैफिम्स एक एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ग्लोबल एकेडमी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड साइंसेस, ये जो है बहुत मतलब 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ इससे जुड़े हुए हैं, लंदन, अमेरिका और स्पेन, पुर्तगाल, बारबाडोस जैसे कंट्रीज़ इससे जुड़े हुए हैं। तो इंडिया के लेवल पर मैं इस साल प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने कार्यकाल में मुझे कुछ ऐसा अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना भारत जो है वो दिखे। तो मेरे सामने ये था कि एक कॉन्फ्रेंस कराई जाए जिसमें हम सारे दुनिया भर के लोगों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे दिमाग में था कि इंदौर में करेंगे क्योंकि इंदौर से कनेक्टिविटी अच्छी है, पर मैंने कहा कि इंदौर तो वैसे भी फेमस है कुछ लेवल पर, तो मैंने कहा खंडवा को क्यों ना फेमस किया जाए। तो मैंने सबके सामने ये प्रपोजल रखा, कुछ मुझे ना भी आए कुछ हाँ भी आए, पर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अलग तो करना ही होता है, और अब जब हमें खंडवा को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला है तो उसे को क्यों छोड़े। तो हमने जो है ये 3 दिवसीय कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर कंडक्ट की थी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 150 से ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया था, और स्टूडेंट्स में 200 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे इसमें, जिसमें हमने कई तरह की गतिविधियाँ की थी, पोस्टमार्टम डिसेक्शन और टॉक्सिकोलॉजी वर्कशॉप, रियल लाइफ लेसन्स पर पॉडकास्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पेपर्स प्रेजेंटेशन, बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो ये 3 दिवसीय यात्रा जो है वो बहुत ही अमेजिंग रही।
1: जी, सफल यात्रा रही और आगे की यात्रा की तैयारी करते हुए रही।
0: जी
1: जी मैम, अब हालांकि आपसे बातचीत का सिलसिला तो ऐसा लगता है पूरा दिन भी निकल जाए तो भी कम ही पड़ेगा, लेकिन अब बीच में सुनते हैं आपकी ही पसंद का एक गीत।

0: जीवन से आपकी क्या अपेक्षाएं, यानी कुछ ऐसा ध्येय जो लगता है कि नहीं अधूरा सा है, इसे पूरा करना है?
1: एक्चुअली मेरी लाइफ तो ऐसे ही फ्लो होते गई। लक्ष्य तो मेरा बस एक ही था, पहले डॉक्टर बनना और पेशेंट की सेवा करना। उसके बाद ये सारी चीज़ें होते गई जिसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। जो जो मेरे सामने आते जा रहा है मैं उसमें बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अब लक्ष्य तो यही है कि जो मैंने हासिल किया है उसको आगे मैं समाज तक कैसे पहुँचाऊँ। क्योंकि मैंने जब ये सारे डिग्रीज, जो क्वालिफिकेशंस मेरे पास है, वो आने के बाद कभी किसी ने बोला कि क्या श्रीकांत जिचकार से कम्पीट करना है या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से कॉम्पीट करना है, क्यों कर रहे हो ये सब? तो मुझे तो, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं था, क्योंकि मैं तो सत्य के खोज में निकले जैसे मुझे कुछ भी क्यूरियोसिटी होती है उसका नॉलेज लेना होता है तो मैं वो क्वालिफिकेशन ले लेती हूँ। बट देन किसी ने कहा मुझे कि भाई तुम अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या मतलब अपने कुछ हेरिटेज तो छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, मैं तो सिर्फ हासिल करते जा रही हूँ, मैं कुछ छोड़ के तो जा ही नहीं रही हूँ। तब से मेरे दिमाग में ये आया है कि मेरे पास जो है मैं कैसे दुनिया तक पहुँचा सकती हूँ। उसके वजह से मैंने जो है अभी कुछ बुक्स लिखे। पहला तो बुक मेरा मेडिकोलॉजिस्ट था, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड लॉज के ऊपर है। दूसरा मैंने जो है जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैनुअल FMT का, मतलब फोरेंसिक मेडिसिन का जो मैनुअल है, मध्य प्रदेश में बहुत अंश कॉलेज में ये चलता है। और उसके बाद हमने ADU, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जनरल पब्लिक के लिए बुक है, जो हिंदी में और इंग्लिश में ई बुक के माध्यम में भी है और प्रिंट बुक के माध्यम, और उसका ऑडियो वर्जन भी अभी आने वाला है ऑडियो बुक के माध्यम से। और एक थायराइड के समस्याएं जिनकी है उनके लिए थायराइड हीलिंग पर एक बुक है। और अभी रिसेंटली मैं हेल्थ रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर भी बुक लिख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे मैं जानती हूँ वो दुनिया को दे सकूँ। यूट्यूब चैनल पर भी मैं कुछ ऐसे ही नॉलेज वाले कुछ कंटेंट डालते रहती हूँ। तो वो डायलॉग जो है, किसी ने बोला था कि आप बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं, मैं सबके लिए कुछ छोड़ के जाऊँ।
0: जी जी बहुत ही सही बात है। यानी यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो मुझे आपकी डायरी में लिखा दिख रहा है वह मैं भी गुनगुनाना चाहूँगी कि आज से पहले आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। और सच में ऐसा लगता है कि एक जीवनी नहीं, हमने कई जीवनियों को एक साथ इन चंद मिनटों में सुना है, समझा है, या यूँ कहें समझने की कोशिश की है। अब हमारे श्रोताओं के बीच कुछ ऐसी बात जो जानना ज़रूरी हो एक मुलाकात के माध्यम से?
1: बस यही कि हम हासिल करने से ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं दुनिया को। क्योंकि मेरे कुछ जीवन में कुछ ऐसे पल है जिनसे मैं कुछ कुछ नाराज़, मतलब नाराज़ इन द सेंस कि मुझे लगता है मैंने छोड़ दिए, जिसमें आता है कि मैं माँ बाप के साथ नहीं रही, तो उनके लिए कुछ करने का अवसर मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं जितने दिन उनके से दूर रही हूँ उनसे नफरत की है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। बट जैसे बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि हर एक की एक अपनी लाइफ होती है, हर कोई अपना एक प्रारब्ध लिख के आता है और संचित कर्म अपने होते हैं जो हमें करने चाहिए। तो मुझे एक ऐसा लगा कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ कर पाती जो मेरे से छूट गया, मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर पाती जो मुझसे छूट गया, जो मैं जिसमें असमर्थ महसूस कर रही थी। तो वो जो जो पल हमारे पास आते हैं उसमें हम कितनों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल नहीं है। तो मरने से पहले, मतलब जैसे अगर आज ही हमारी मृत्यु होने वाली हो, तो क्या हमने वो सब चीज़ें की है जो हमें करनी चाहिए थी, वो सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी सोच है।
0: आपकी सोच के साथ हम भी हैं कि जिंदा दिली से हर पल को जी लें, और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हमारे साथ हमारे आसपास जो हैं या जिन्हें हम ज़िंदगी दे सकते हैं उन्हें वास्तविक जीवन के लिए हम अपनी तरफ से कुछ दे पाएं। अब चलते चलते एक गीत मैम की पसंद का।

0: विदा लेते हैं एक मुलाकात से, फिर मिलेंगे एक ऐसे हस्ती के साथ। आज आपके साथ थी मोना दफ्तरी और हमने एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, एक मुलाकात के जरिए डॉक्टर सीमा सूटे के जीवन को संक्षिप्त समय सीमा में आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला सीमा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

0: विदा लेते हैं एक मुलाकात से, फिर मिलेंगे एक ऐसे हस्ती के साथ। आज आपके साथ थी मुना दफ्तरी और हमने एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, एक मुलाकात के जरिए डॉक्टर सीमा सूटे के जीवन को संक्षिप्त समय सीमा में आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला सीमा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज स्पॉन्सर कार्यक्रम एक मुलाकात। इसमें डॉक्टर सीमा सूटे से बात की मोना तफ्तरी ने। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांगकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ

0: अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन

0: रिटर्न सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
3: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का

0: भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं पंकज उदास।

0: रखा। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई चंद रचनाएं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
3: और आकाशवाणी खंडवा। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
4: आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार करें राखी जैन का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं के गाए इस गीत से। गीत के बोल लिखे हैं संजय मासूम ने, संगीत जीत गांगुली का और फिल्म है राज 3। पसंद आप सभी की। बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मार्कंडे, ममता संहिता और संजीता मार्कंडे। इंद्रपुरी कॉलोनी खंडवा से वंदना राजविद, शेजल अम्बन, शिवांशी तुलसी पगारे और रितिका साध। इसी गीत को पसंद किया निम्बोरा महाराष्ट्र से बमन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत, करिश्मा, अशोक देशमुख और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत को पसंद किया है नांदूरा महाराष्ट्र से है नारायण भाऊ खड़से, रक्षाबाई, ललिता और गणेश कार्तिक। कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। पथरिया से है नरेंद्र नोमान, कुसुम, प्रोनिका, प्रोमानिका, उत्कर्ष और इनके परिवार के सभी सदस्य। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इस गीत को पसंद किया है। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल हमारे इन श्रोताओं के मिले हैं। कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, अनुश्री और प्रमिला। चंडीगढ़ से है डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक और अनिल शर्मा। डिंगरा सहारनपुर से है सुरेश डोम और आशु डोम। बोरखेड़ा पित्रामल से है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत और चेतन नाहटा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से है राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका और तन्मय गजबीये। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
6: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
7: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म

ये जवानी है दीवानी फिल्म से तर्ज बनाई है प्रीतम ने, बोल अभिजीत भट्टाचार्य के और आवाज़ है तोशी रैना और रेखा भारद्वाज की। पसंद आप सभी की। दिल्ली से है याकूब आसमा और यूसुफ आसमा, कोलगांव से है पांडु चंदन और उषा चंदन, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येन कुमार चंसोलिया, आदर्श और सार्थक। इसी गीत को पसंद किया है माँ बिजयासनी रेडियो श्रोता संघ माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता उदय और उज्जवल कटारे ने। डुमराव से है असमा अंसारी, आमना और इनके परिवार के सभी सदस्य। गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर गांधी और इनके परिवार के सदस्य। वंदना नगर इंदौर से है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश और कार्तिक खर्चे। इसी गीत को पसंद किया है काले गांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे और इनके परिवार के सभी सदस्य। खंडवा से है मोहम्मद हसनैन, हसू बाबा, मोइन छोटू और मोहम्मद फाजिल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशा और इनके परिवार के सभी सदस्य। कानपुर से पसंद करने वाले हैं आफताब अल्लाह और अल्ताफ उल्लाह। इलाहाबाद से है रेशमा नाज और बेबी अंसारी। छेगांव देवी से है अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, झवर और तनुश्री। सिंगारतलाई खंडवा से है राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश, भारती यादव और राहुल यादव। तारानगर बड़वा से है भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ और अनवी कुशवाहा। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीत और कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का है, फिल्म है बर्फी, पसंद आप सभी की। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, रानू नानू रविंद्र और रौनक सेन। इसी गीत को पसंद किया है घासपुरा खंडवा से अब्दुल हमीद खलीफा हबीब सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। मोटक्का माफी खंडवा से है जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल। इसी गीत को पसंद किया है सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक, सचिन और प्रभा कटारिया ने। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी और सलोनी। इसी गीत को पसंद किया है सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप ने। शनि चौक खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश ताई। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और इनके परिवार के सभी सदस्य। लक्कड़ बाजार खंडवा से है ठाकुर भवानी से बेस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर। गौतम नगर नांदेड़ से है प्रभाकर जोतले और आरती। सनावत से इस गीत को पसंद किया है अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोढ़ाना ने। बिलासपुर से पसंद करने वाले हैं वसीम आसमा, अकरम आसमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से है गंगाधर येमेकर और प्रमोद येमेकर। वडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कोल्हापुर से इस गीत को पसंद किया है विजय चौहान और तेजस्विनी चौहान ने। दिल्ली से है अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। संभाजी नगर से है राकेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। इसी गीत को पसंद किया शेगांव महाराष्ट्र से है मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल और मोहम्मद जुनेद मोहाल ने। जामली कला से है माणक चंद राठौर और पुष्पा बाई राठौर। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीत कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। लीजिए आप सुनिए एक बार फिर अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का है, फिल्म है छिछोरे। पसंद आप सभी की, खंडवा से इस गीत को पसंद किया है आनंद जोशी और तनुजा जोशी ने। राठौर मोहल्ला क्राम जामली कला से है माणक चंद राठौर और पुष्पाबाई राठौर। रतनपुर झिरनिया से है जितेंद्र सिंह गौर, नरेंद्र सिंह गौर, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्युति, यशराज और इनके परिवार के सभी सदस्य। भीकन गांव से साफिया अरहान, अनस, शिफा और अयान। कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमास पानो और सबीना जहीर पवार। सनावत से है किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारुवी, प्रणव और इनके परिवार के सदस्य। शाहदरा दिल्ली से है तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, चैतन्य और इनके परिवार के सदस्य। चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिक खुराना और केशु खुराना। मालियान सरधना मेरठ से है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और जिव्यम जैन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता और अर्णव आनंद। पश्चिम बंगाल से है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। इसी गीत को पसंद किया है भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार। दिल्ली से है लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से इस गीत को पसंद किया है प्रभा जाटव, डॉली जाटव और कबीर जाटव ने। गाजीपुर से है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से इस गीत को पसंद किया है रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल ने। टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से है जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार और रीचा देवांगन। वर्षिंगी महाराष्ट्र से है अमोल मानकर, शुभताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेघ। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। पंडरपुर सिटी से है प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज और ऋषि शिंदे। सहारनपुर से है जॉन डिकेस्टो और रोजी डिकेस्टो। धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम और इनके परिवार के सदस्य। रोहतक से है सीताराम कांगड़ा, बबीता और निखिल कांगड़ा। राजकोट से है जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। जमशेदपुर से इस गीत को पसंद किया हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया ने। वरवट वकाल से है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने और इनके परिवार के सभी सदस्य। शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू से, निशा, सपना, ओम और इनके परिवार के सदस्य। दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और इनके परिवार के सदस्य। जालंधर से देवशंकर जटोलिया। आप सब अपनी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके मीत ये गीत कार्यक्रम संपन्न करने की राखी को दे आज्ञा। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर जाने

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

अ फ्लाइंग जेट, इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज़।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज

0: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।
1: सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: रही है सुरों की सरिता। घोलती है
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
2: उमरिया जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकल्पकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है।

जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक क्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति मनीष कुलकर्णी की है।
2: फोन करें गीत सुने। आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपकी ही पसंद। फोन करें गीत सुने।
3: वेलकम फ्रेंड।

0: फोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मनीष कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेते हैं ये पहला फोन कॉल।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं सुभाष मार्ग के भीकन गाँव से संतोष सातले बोल रहा हूँ सर।
0: संतोष सातले जी बोल रहे हैं?
1: हाँ सर।
0: सुनाइए, आप क्या कर रहे हैं इस बार?
1: कहीं सर विष्णु देवी गए थे 23 तारीख को, माता जी के दर्शन करने गए थे, वहाँ पर भी कार्यक्रम सुना था मोबाइल पे, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, वहाँ पर भी सब कुछ सुनाया भी, और 30 तारीख को आ गए भीकन गाँव सर।
0: चलिए, आप माता जी के दर्शन करके आ गए हैं, खूबसूरत मौसम का आनंद भी लिया होगा वहाँ पे आपने।
1: जी सर।
0: और अब हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर माता जी का ही गाना सुनना। मैं
0: कौन सा गाना सुनना है?
1: स्वर्ग से सुंदर का गाना है।
0: कौन सा गाना है?
1: ओ देवी माता रानी तूने सबकी माने।
0: तो सातले जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: सर आप कौन बोले सर?
0: मैं मनीष कुलकर्णी बोल रहा हूँ।
1: हाँ सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी।
1: सर मैं परिवार का नाम लेना चाहता हूँ सर।
0: बोलिए बोलिए।
1: मेरा नाम संतोष सातले, मेरी पत्नी का नाम है सारिका सातले, मेरे लड़के का नाम चंदन सातले, मेरी मम्मी का नाम किंचन भाई सातले, मेरे भाई का नाम है शैलेंद्र सातले, मेरे भांजे का नाम है रोहित सातले सर।

0: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं
1: मोहम्मद हारून साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
1: जिला विदिशा। क्या करते हैं आप?
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: खेती बाड़ी करते हैं आप वहाँ पर, और इसके अलावा क्या करते हैं?
0: बस रेडियो का शौक है।
1: हमारा आकाशवाणी सुनते हैं?
0: ये हेलो आकाशवाणी सुनते हैं और कुछ क्रिकेट सुनते हैं, जो आईपीएल चल रहा है इस बार। और मोबाइल ऐप से अच्छा सुविधा हो गई है ना उससे।
1: हमारा कौन सा प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: हेलो फरमाइश ज़्यादा अच्छा लगता है, बस कुछ सुनते हैं।
1: हेलो फरमाइश सुनते हैं
0: जी।
1: फ़ोन करेगी सुने नहीं सुनते आप?
0: जी जुई तो है ना, हेलो फरमाइश फ़ोन करेगी।
1: हाँ, तो इस कार्यक्रम का नाम है फ़ोन करे गीत सुने, जैसा आपने फ़ोन किया है और हम आपको आपका पसंद का गीत सुनाएंगे। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप हमारे इस कार्यक्रम से?
0: हाँ, फिल्म है दिलवाले का, सुनवा देना आप।
1: चलो ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार, फोन करें गीत सुने।
0: बिल्कुल फोन करे गीत सुने। कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत दिनों से बात हो रही सर आपसे, आप कौन बोल रहे हैं?
0: अरे आप कौन बोल रहे हैं, आप तो बताएं।
1: हम बोल रहे हैं बहादुर चक्रवर्ती, अबार माता रोड, बस स्टैंड रामटोरिया, तहसील घोड़ा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड से।
0: बाप रे बाप, बहुत लंबा परिचय दे दिया आपने। छतरपुर बुंदेलखंड से।
1: रामटोरिया हमारे से दिल्ली गाड़ी जाती है, हमारा गांव बहुत कस्बा है, बड़ा है। मतलब
0: क्या करते हैं आप बहादुर जी?
1: हम वैसे अभी इंडिया में तो अभी आए हैं, अभी 4 महीना हुए हैं। पहले हम दुबई में थे, काम कर रहे थे।
0: क्या
1: और
0: काम कर रहे थे दुबई में?
1: अभी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत बड़ा मेला लगा है, अबार माता मेला,
0: क्या होता है उस मेले में?
1: झूला आते, सरकस आते, मोतकुआ आते, बहुत दूर से आते सर। आप नहीं आए? खंडवा, बैतूल, भोपाल, हर जगह आदमी आता है, पंजाब, दिल्ली, हर से बहुत दूर
0: आप
1: से। तो
0: बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे।
1: हम तो बुला रहे हैं, आइए अभी, आप स्वागत है मेला में।
0: चलो बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया तो हम हाजिर हो जाएंगे। और आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज हमको मेला फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: कोई भी गाना?
1: हाँ कोई भी गाना सुना दीजिए।
0: चलिए हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: सर इसमें नाम ले लें सर दोस्तों के। हमारा
0: ले लो ले लो।
1: एक छोटा भतीजा है, गोलू प्रजापति, नीरज प्रजापति, और मेरी भाभी जसोदा भगुन्दी, और रामकली, और ममता देवी, उमा देवी, बड़े भैया हरी राम, और भारती आरती काजल करण, समस्त राम टोरिया।
0: चलो आपने सबका नाम भी ले लिया है तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने।
1: हेलो,
2: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में।
1: जी सर नमस्ते, जय जगन्नाथ।
2: जय जगन्नाथ, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं चित्रसेन बोल रहा हूँ, उड़ीसा से, जिला कालाहांडी, भैया भवानी पाट, पटना, गांव का नाम जगन्नाथपुर, नाम चित्रसेन सबर।
2: क्या करते हैं आप?
1: मैं तो होटल चलाता हूँ मैडम। जी सर,
2: होटल चलाते हैं तो होटल में क्या बनाते हैं? समोसे, कचौरी, क्या क्या बनता है आपके यहाँ?
1: हाँ जी, समोसे बनाता हूँ, घरी बनाता हूँ और पूरी बनाता हूँ। और
2: मीठे में क्या बनाते हो? मीठे में
1: मालपुआ, जलेबी।
2: मालपुआ, जलेबी?
1: हाँ जी।
2: क्या बात है, तो आना पड़ेगा आपके यहाँ मालपुआ खाने ना।
1: आप आओ ना एक बार उड़ीसा।
2: बिल्कुल, उड़ीसा आएंगे। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: दिल पे तेरे प्यार का पेना मैं लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पेना मैं लिख दूं, आजा जिंदगी में तेरे नाम।

0: मूलचंद कारपेंटर जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संजय नगर खंडवा।
0: संजय नगर खंडवा में आप रहते हैं और कारपेंटर का काम करते हैं आप? तो हमारे रेडियो सुनते हैं कि नहीं?
1: जी सर सुनते हैं।
0: सुनते हैं आप? कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? मतलब विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे आकाशवाणी खंडवा का कार्यक्रम नहीं सुनते हैं आप? सुनते हैं सुनते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: किशोर कुमार का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: आपकी कोई पसंद?
1: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
0: आपको हम सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर, मैं दुर्गेश नागनपुरे बोल रहा हूँ, ग्राम जसवाड़ी से।
0: दुर्गेश नागनपुरे जी, सुनाइए क्या चल रहा है आजकल?
1: जी सर, ठीक है, कार्यक्रम सुनते रहते हैं आकाशवाणी खंडवा के। सर,
0: और क्या कर रहे हैं आजकल?
1: मेरा तो संगीत का काम है, कथाओं में जाता रहता हूँ।
0: संगीत में बजाने का काम भी करते हैं और गाने का काम भी करते हैं आप,
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। तो दुर्गेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आप?
1: सर आज फिल्म लगान का गाना सुनना है,
0: लगान का कौन सा गाना सुनना है?
1: ओ पालन हारे।
0: ओ पालन हारे। आप भजन गाते हैं ज्यादातर,
1: सर इसी गीत को मैं गुनगुना देता हूँ।
0: सुनाइए।
1: ओ पालन हारे, निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन

0: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग रहा नीरज पाटिल, बिशन दांगुड़े और मनोज कुमार गुप्ता का। कार्यक्रम में सहयोगी रहे शाहबाज उस्मानी और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके दोस्त मनीष कुलकर्णी ने। तो अब आज्ञा दे कार्यक्रम समाप्ति की। नमस्कार।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक क्रम फोन करे गीत सुने, प्रस्तुति मनीष कुलकर्णी की। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बाल जगत में। बच्चों, आज का प्यारा सा बाल जगत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दीदी मोना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारा ढेर सारे प्यार दुलार और स्नेह आशीर्वाद के साथ नमस्कार। बच्चों, आज का दिन यानी मई माह का दूसरा रविवार मदर्स डे, मातृत्व का उत्सव मनाने का दिन। बच्चों, माता के बिना एक पल एक दिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माता का स्थान सदैव सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। उनके बाद ही हम सबका स्थान शने शने बनता है। हर दिन हर पल का माता का दिन है, वह तो क्या है, एक पल को मानव उत्सव के साथ मनाता है और यह भूल जाता है कि क्या केवल एक ही दिन माता के लिए है, नहीं ना। और बच्चों, जीवन में उत्साह आशा तभी है जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता रखें और वो भी माता के लिए, फिर क्या कहने। आज हम सभी मदर्स डे मना रहे हैं बच्चों। हम जानते हैं हमारे बच्चों ने भी अपनी मम्मी के लिए पहले से ही कुछ कुछ तैयारियां करके रखी है। किसी ने उनकी पसंद की मिठाइयां ला के रखी है, तो किसी ने कोई गिफ्ट या कोई ऐसी बात जो उनकी मम्मी उनसे मनवाना चाहती हैं वह आज मान रहे हैं। पर प्यारे बच्चों, माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है अपने बच्चे को उस मुकाम पर पहुँचता देखना जहाँ वह अपने जीवन के प्रति सुरक्षित महसूस कर सकें, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा और सच्चा सामाजिक व्यवहार बच्चे के अंदर हो। बच्चों, किसी भी माता पिता के लिए आप भगवान जी के दिए वह गिफ्ट हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की खुशियों को समाये हैं। माँ की दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो जाती है। आज का दिन कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करें जहां हर दिन आपकी खुशी जो आपकी मम्मी के लिए सब कुछ है वह आज के दिन के साथ साथ कुछ ऐसी यादों में बन जाए जो उन्हें जीवन भर खुशी के पल का अनुभव करवाती रहें। आप भी अपनी मम्मी को गिफ्ट दें कुछ ऐसा अनुशासित आपका जीवन हो। अपनी माता के साथ संसार की हर स्त्री का आप सम्मान और आदर करें। शिक्षा उज्जवल भविष्य की आधार नींव है, वह अच्छे से हासिल करें। साथ ही बच्चों, अपनी माता के साथ साथ गुरु माँ, अपनी धरती माता और अपनी भारत माता के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। देश के अच्छे नागरिक बने, फिर देखिए ना कैसे ना आपकी मम्मी की ब्लेसिंग आपके साथ काम करती है और पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए जुट जाती है। संसार का प्यार दुलार भी आपको मिलने लगता है। मम्मी तो हमेशा आपके लिए यही सोचती है ना कि आ चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आइए बच्चों, हम भी सुनते हैं आपके साथ साथ यह गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: बच्चों, अब हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं ना, विषय समय

समायोजन। आपको मम्मी को खुश रखना हो ना बच्चों, या यूँ कहें जीवन में हर किसी को प्रसन्न रखना हो, तो आपको समय का समायोजन करना ही होगा और साथ ही अपने आसपास के लोगों को करवाना होगा, तभी आप सफल रह पाएंगे, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। बच्चों, समय का सदुपयोग करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ अपनी किसी हॉबी के लिए भी समय निकालें, साथ ही शारीरिक और मानसिक व्यायाम के लिए भी समय निकालें, तभी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। साथ ही समय की जो फिजूल खर्ची है ना, यानी दूसरों की कमियां ढूंढना, दूसरों की बातों को सोचना, वह ख़त्म करें, खुद की खूबियां ढूंढें, फिर देखिए ना कि कैसे समय की बचत नहीं होगी। सदुपयोग करें, यह आपको खुद ही करना होगा बच्चों, कोई और यहाँ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, हम और आपके मम्मी पापा टीचर सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसकी सुंदरता को, प्रकृति को निहारने का मौका भी जब मिले ना, तो जरूर निहारें। और बच्चों, सब कुछ संभव है इस छोटे से जीवन में, बस हमारे मन में होना चाहिए।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्यारे बच्चों, अब हमारे आज के कार्यक्रम की कहानी। बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची सीख। प्यारे बच्चों, माही 17 वर्ष पूर्ण कर 18वें वर्ष की तरफ बढ़ता जीवन, कक्षा 12वीं की छात्रा, 3 बहनों में सबसे छोटी, दादी, दादा, नाना, नानी की लाडली। दोनों बड़ी बहनों का ब्याह हो गया था, अब वह घर में सबकी लाडो रानी और अकेली बच्ची। बच्चों, ऐसा होता है ना कि जब बच्चा अकेला रहता है तो सबका लाड़ दुलार बच्ची को थोड़ा सा अहंकार और जिद्दी बना देता है, तो वह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्या हो रहा है। माही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माही खुद को समझ ही नहीं पा रही थी। मनमानी करना, अपने दिल के हिसाब से उठना बैठना, सबसे व्यवहार करना, यहाँ तक कि पढ़ाई करना और खाना खाना भी

उसकी आदतों में अब अपने हिसाब से शामिल था। अब धीरे धीरे आदतें ऐसी बनी कि अपने कमरे में ही सीमित रह गई, कभी पढ़ाई तो कभी मोबाइल पर समय, परिवार के लिए समय ही नहीं। उसे ऐसा लगता कि वह तो अकेली है, जिसको ज़रूरत होगी उसके कमरे में आकर उससे बात कर लेगा। अब ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। अब अवकाश का समय आया, बहनें, बड़ी जो ब्याही गई थी वह घर आई। उन दोनों बहनों ने जब देखा कि माही की आदतें तो अब कुछ ऐसी हैं जो विचारने लायक हैं, उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा इस विषय पर माही से बात करेंगे। सिर्फ पढ़ाई से तो जीवन नहीं चलता है ना, सामाजिक सरोकार, पारिवारिक व्यवस्था भी तो जरूरी है। अब वह विचार कर ही रही थी कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माही के पेट में तेज दर्द और फिर वोमिट होने लगी और लूज मोशन। शायद खान पान में कुछ आ गया होगा जिससे तबीयत बिगड़ी। माही सुस्त हो गई, इतनी कमजोर कि चक्कर ही आने लगे और खुद को वह संभाल ही नहीं पा रही थी। अब उस समय उसकी वह गंदगी उसकी बहनों और माँ ने साफ की। फिर क्या था कि किसी की मदद न करने वाली माही की मदद के लिए पूरा परिवार साथ खड़ा था। दोनों बहनें भी सब छोड़कर फिक्रमंद माही के आसपास ही मंडराती रहीं, कभी कुछ खान पान का तो कभी तबीयत का तो कभी सिर पर हाथ रखती। अब जीवन में पहली बार इस तरह से माही बीमार हुई थी। अब उसे एहसास हुआ कि परिवार की वह जो कड़ी है ना, कितनी मजबूत है, और मैं यह अपने परिवार के साथ क्या बर्ताव कर रही थी। 2-3 दिन खामोशी से, क्योंकि कहीं न कहीं हीन भावना तो रहती है ना बच्चों। फिर माही ने खुद को मानसिक रूप से परिवर्तित करने का अपना आपका जो समय था वह ढालने लगी। अब परिवर्तन तो होना ही था। अब वह अपने काम में खुद साझेदार हुई, यानी अपने काम के साथ साथ बड़ों के लिए भी, मम्मी दादी को भी वह बिना कहे मदद करने लगी, उनसे बातें करने लगी। बच्चों, यह जीवन की सच्ची सीख अब माही को मिल चुकी थी। इस कहानी का क्या मोरल होता है बच्चों? बस यही ना कि अहंकार कभी न करें, नहीं अब अच्छे नंबरों का जो आपने परीक्षा में प्राप्त किए हैं, नहीं किसी मेडल का या शील्ड का या कोई प्रतियोगी परीक्षा का जो आपने हासिल की है, क्योंकि यह हमेशा ध्यान रहे सबके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है आपका आगे बढ़ना। इसलिए कृतज्ञता बनाए रखें।

बच्चों आज की हमारी जिज्ञासा का प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था? तो बच्चों आप समझ ही गए ना कि आज ही के दिन यानी 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही अब समय हो रहा है आज के बाल जगत कार्यक्रम को संपन्न करने का। आज आपके साथ ही आपकी दीदी मोना दफ्तरी। अनुमति दे। जय हिंद।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ आप, और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल
1: जी।
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें
0: जी जी,
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खासतौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्म
1: जी, लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया,
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी।
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था वो।
0: जी हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात्य परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ।
1: ग्लैमरस माँ, ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
1: बिल्कुल तो गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत सुनेंगे।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने। तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कॉम्पिटिशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आज,
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई, तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
2: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था?
3: एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो। एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है, यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
2: यू ग्रो करते हैं
3: एज एन आर्टिस्ट। और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर
2: खाने पीने की कोई सुध नहीं, और वो
3: हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
2: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?

0: ऐसे प्लेज मैंने काफ़ी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई वो था पुरुष करके,
1: जी
0: जयवंत दलवी जी का प्ले था जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था,
1: बाद में उन्होंने दोबारा
0: वो हिंदी
1: किया।
0: में हुआ,
1: जी
0: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई
1: जी
0: कैन से।
1: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी। शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो।
0: जी मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था तो इसलिए मुझे हंसी आई, मैं रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो।
1: जी
0: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी,
1: जी
0: उसके बाद अगेन देर वॉज अ बिग गैप।
1: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थीं।
0: हाँ सिंहासन आई थी और दो तीन,
1: माझा घर माझा
0: हाँ
1: संसार,
0: माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननंद भौजाई आई थी कह
1: तो
0: सकते हैं।
1: आपकी मराठी सिने यात्रा कहां से शुरू हुई थी?
0: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई वही फिल्म में मैंने मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन
1: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा
0: हाँ
1: था।
0: वो तो चली, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
1: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
0: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
1: जी
0: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे, बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे। मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है दिखाया कुछ और जाता है, तो
1: जी
0: बोले नहीं नहीं मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट यू नो। तो मैंने कहा नहीं ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट, एंड राजश्री पीपल दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है यू नो,
1: जी
0: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो
1: जी
0: ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है।
1: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी,
0: जी
1: और उसके बाद फिर एक
0: फंस
1: तरह से
0: गई
1: वो
0: मैं फंस
1: रिवाज।
0: गई मैं
1: मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
0: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है, सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील, लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है, तो
1: कैसे
0: ऐसे
1: वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
0: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है,
1: जी
0: बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ, एक भरोसा है एक ट्यूनिंग है हम दोनों की, वेन एवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट, तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं, एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं, एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैंने देख चुकी थी मैं जहां रह रही थी तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं थ्रू डायलॉग्स ओनली।
1: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
0: निकल आया
1: बाहर आया तो कैसा लगा?
0: अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है ये
1: जी
0: रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है, तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं उस
1: जी
0: वक्त पता चलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है, देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है यू नो। तो जब मैंने वो सीन किया उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे।

0: काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा, जब आपने आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि ये
1: मतलब
0: फिल्म
1: अभिनेत्री
0: का है
1: एक
0: कि
1: तरफ हो गई और
0: हाँ,
1: कैरेक्टर आगे आ
0: कई
1: गया।
0: लोगों का ऐसा कि नहीं, माँ है, मार कैसे सकती है। अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल।
1: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
0: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत की, बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम
1: जी
0: जगह मिलता है, तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था। बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है।
1: जी
0: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली माणसं करके था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: किस तरह का रोल था?
0: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है।
1: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
0: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त, तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है, और लाइट
1: आज भी
0: बंगाली
1: शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप?
0: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभार, अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोर यामुनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है,
1: जी
0: काफी काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने, भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो
1: क्या
0: मुझे
1: बात है।
0: बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुनो, उनके उनकी जो आवाज है ना, उससे अंदर हो जाता है एंड यू गेट द
1: जी
0: स्ट्रेंथ।
1: बिल्कुल, भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो
0: जी
1: एक तरह
0: बिल्कुल,
1: से।
0: मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ।
1: आइए एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी
1: वो गाना मुझे,
0: अनकही,
1: हाँ
0: उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है भीमसेन।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं।
1: सच में।
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का।
0: जी,
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको।
1: लेकिन
0: फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था, और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे, और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा, और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का
2: जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं, और वहां से ये आ गए मुंबई, और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी

0: गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रुपए से शुरुआत हुई थी इनकी।
1: 35 रुपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे। और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
0: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है।
0: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं। तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
0: ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम जी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को।
0: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
0: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है।
1: जी हाँ,
0: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है।
0: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी।
1: याद दिलाइए।
0: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था और थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्ट से या कि हीरो से? आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
3: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया और फिर फिल्मों में हीरो बने। काफी अरसे तक हीरो रहे, नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुढ़े हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
2: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
3: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
2: आजकल आपको, अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? या ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
3: नहीं नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी, तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे, और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2-3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5-6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी 1-1.5 घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके 1-man show करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं, समझो कि 6-8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है, शाइलॉग भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं समझे, गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं, हमने अब तक 74 शो किए हैं समझे लंडन।

0: में भी किए, तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और न ही उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में?
0: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है समझे, और कम से कम 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग,
1: काफी लोग
0: जो शहर, जो शहर
1: मुंबई
0: हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए
1: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
0: ये भी लिखता हूँ, इसमें कहते चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं समझे। हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजूमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे समझे।
1: आप क्या क्या करते थे?
0: कमाल है वो, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूं। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ, तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जब सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे, तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा
3: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया
3: जी हाँ।
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
4: सच कहा विक्रम,

0: तुमने कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
1: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनके रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
2: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढंटन टैन, वो फिल्मों में नहीं होता, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
1: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
2: ये उस दौर की फिल्म है ना, कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है और उसके बाद क्या, डंटन टैन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे, सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो डंटन टैन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी। और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना, मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
1: बताइए।
2: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है।
2: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
1: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
2: जी,
1: सुनना पड़ेगा और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
2: तो चलिए सुन लेते हैं।
3: अगर

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939

0: 1942 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
1: प्रकाश मेहरा साहब का।
0: और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने मनीषा जी,
1: जी।
0: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी
1: शशि कपूर साहब की,
0: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
1: कौन सा वाला गाना?
0: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो इनका था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
1: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आप की जबान से।
0: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब। तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया
1: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
0: मनीषा जी फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
1: बिल्कुल,
0: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
0: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
1: जी।
0: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई इसमें, तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
1: जी।
0: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जला के, प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया। एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
1: आप ही बता दीजिए ना।
0: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
1: क्या बात है,
0: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
1: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
0: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मधुर रोमांटिक फिल्मों का हीरो
1: जी।
0: तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
1: जी।
0: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने सलीम साहब ने उनसे।
1: अच्छा।
0: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
1: यही मुंबई में।
0: और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी।
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे।
1: अच्छा।
0: तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार
1: जी। हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें एक खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो, उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
1: वाह।
0: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओ, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अब सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।

0: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ। मुंबई किस उम्र में आया?
1: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नागदेवता और नागपंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पर शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पर बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अब ये माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो, यार मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला, तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आप क्या काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
0: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
1: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
0: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री
1: आए थे राइटर बनने? अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई, काम करते करते मोहन सहगल के और उसके यहाँ तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदुभूषण से दोस्ती हो गई। इंदुभूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदुभूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदुभूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोहन सहगल के साथ और काम करने दे, विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, मोहन सहगल के वहां से एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी।

0: पैसे की। नोट तो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मांझी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोनसागल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई। किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोनसागल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा, यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता। जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज्ड टू बिलीव इन डेस्टिनी, कि आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसेरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो हसीना मांझी शुरू हो गई। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मांझी की रिलीज के 1 महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांद्रा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मांझी भी वो थे, हसीना मांझी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर 1 हफ्ते में ले लूंगा और हम 1 हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नडियाड वाले की और एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मांझी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
0: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
1: जी,
0: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। उनकी सारी उम्मीदें थी, ओबेरॉन की फिल्म बंदेहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, 2 ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंद्रराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे, बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो, एंड मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा

एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राजी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राजी अभी चार पाँच दिन में सेंसर हो जाएगी, तो मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राज्य की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है।

0: होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में

0: आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनम नान தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियुक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

मुझे पिया नहीं भूले मारे खुशी के मैं तो भूली ना।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं 7 समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदीवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय। कितना मिलता जुलता है ये समय, और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत, और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मजेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आधी गीत दिखा, सारे गीत तो हमें नजर नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की भारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतजार, इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही है कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप, हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश से जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है

हाँ, एक सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का जमाना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है।

और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता, और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है, मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपए पहली बार कमाए और 245 रुपए की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांधकर समय देखा, जिसमें सेकंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसा ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान, मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया, सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म

लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात है। अपनी HMT के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया है कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: आई बहारा जाई बहार बहारा आई बहार गुलशन में।

फूलों का बुलबुल के दिया होने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया होने को है, आज थालों में दलदल आने को है, आज प्यालों में उबलन।

0: नहीं, ये शादी नहीं, आओ दुनिया बदलने का दिन आ गया। लिए बोलो बिहार बहार आज आई बहार बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरि बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी, क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा, क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माँ।

माँओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब।

एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती, तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए, किस फिल्म का है और आवाज किन

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में से ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है। चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है मां, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी, और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद का है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की

और ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ, और चमकती आंखों से प्यार छलकाती मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्र छाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियां, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियां हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है, बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है, इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1,059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण

करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को MPPSC, बैंकिंग, SSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। IPL क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरकुइया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और CHO के से सेवाओं की जानकारी ली। और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की

0: राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एंद पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर

0: तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है।

0: डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनेरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पढ़ा है नीचे उतरला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना कुछ न छुपाना, हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पत्ती।

0: जी न देख तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी ने धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। अरब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना देख रहा।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना

आज के इस कार्यक्रम में। मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने। अगला नगमा है फिल्म काला पत्थर से और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया श्रृंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम

0: बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
1: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
0: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
1: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है। अबे सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
0: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
1: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
0: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूं। उसी के मुताबिक मैं वहां गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
1: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
0: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
1: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
0: नहीं भैया, नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा? अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
1: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूँ।

मुझे चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है शिव का में अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी। आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माँ जी।
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
2: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
2: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
2: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
2: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
2: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
2: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
2: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या, अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
2: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिव कामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार।

0: बार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती। मामूली खांसी बुखार है तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
1: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
0: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
1: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
0: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
1: कंद स्वामी कौन?
0: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Ma, mother, mummy, where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है? माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मुझे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मुझे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर।

0: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का, कौन है तेरी माँ?
1: कौन? ओहो शिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
0: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
1: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
0: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछें और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है, लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
1: जमीन में गड़ा धन?
0: हाँ।
1: अंकल शिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
0: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
1: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
0: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
1: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
0: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
1: शिंगाराम तूने ये
0: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं, शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
3: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
4: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: शर्मा जी, ये कुमार स्वामी है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंद स्वामी, हम आ गए हैं।

0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
1: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
2: आए आए, इसने मेरी बहन के बेटे को मेरे बादशाह को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
1: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
2: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
1: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
3: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसे नहीं चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
1: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
3: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
1: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
4: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
1: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
3: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।
3: बेटा!

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो।

0: हो गया। श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
1: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
2: देखो गंध स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
1: क्या कह रही हैं आप?

0: अनुवादक P.S. कृष्णास्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारिक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म साहिब।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइनों
1: के भी डेटे हैं, और ठहर गया।

0: और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब।
0: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है। अच्छे तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप याजस ने बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, हनी ईरानी। हाँ,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले। तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलेक्ट तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें। अगर आप चाहे तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो। उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी।
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में। तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहे हैं जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाने अब था, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए। मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ

0: ये उनकी रिश्वा और ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार साहब,
0: दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए, वो मान गए। यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोश, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल,
0: मशाल, मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता सर
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: सॉरी हाँ। शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी
1: हाँ।
0: पहली फिल्म की
1: हाँ।
0: कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त। तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर। मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुन, इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी। उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे।

0: वो थोड़ा सुना दिए, आगे के तीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: ऐसे फिल्म करने का। तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
1: हाँ
0: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था,
1: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन।
0: बहुत बेड मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था,
1: वाह
0: 5%।
1: वाह,
0: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो जय जी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे, वासुदेव धीरे साहब।
1: जी, गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
1: ओहो,
0: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे,
1: जानेसार साहब के,
0: जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओ हो, गजब।
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है।
1: हाँ,
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ।
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह, क्या बात है।
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो, वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला। तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: यारा,
1: जी, इसीलिए वो सागर यारा,
0: सागर यारा
1: किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहले जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि वो मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा क्या आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप?
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ ओ ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर

0: शुरू करने, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया। सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन था, आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी।
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं। जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पर लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: लोग देखते हैं। नहीं, करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले से शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक।

0: सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला क्योंकि वाइस ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

0: वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में। आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर। एक छलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते। देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।
1: रुख से

मोहब्बतों में नुमाइश की ज़रूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह। जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब आप सुनेंगे निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत FM 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सृष्टि यादव। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा विशेष क्रम और आपका पसंदीदा क्रम हेलो फ्रेंड्स हम शुरू करें, उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन है? और दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई 2026 में अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए कौन सा सप्ताह शुरू किया है? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक आनंद लीजिएगा युववाणी का अपने रेडियो सेट पर।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं आप?
2: जी मैडम, मैं मूलचंद मिस्त्री कारपेंटर।
1: जी मूलचंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: खंडवा से, संजय नगर खंडवा।
1: जी तो ये बताइए कि आकाशवाणी खंडवा के प्रोग्राम आप सुनते हैं?
2: जी मैडम।
1: जी आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं?
2: सहेली है, कार्यक्रम भी सुनते हैं मैडम।
1: जी ये बताइए कि गर्मी इतनी पड़ रही है तो आप कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं?
2: नींबू पानी पियो, ये करो, मतलब धूप में ज्यादा मत घूमो, माल वगैरह बांध के कहीं निकलो।
1: जी चलिए, आज के हेलो फ्रेंड्स में आपने कॉल किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: मैडम बागवान पिक्चर का गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस फिल्म का गाना।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स पे आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम नमस्ते। मैडम
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं भीकनगांव से संतोष सातले बोल रहा हूँ। मैडम
0: जी संतोष जी,
1: आकाशवाणी खंडवा बहुत पुराने श्रोता हूँ और सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे भी लगते हैं। मैं पत्र भी लिखता हूँ मैडम और युवानी कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है मैडम
0: जी। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
1: मैडम मेरी किराना दुकान है भीकनगांव में। मेरे परिवार का नाम लेना चाहता हूँ मैडम। मेरी पत्नी का नाम है सारिका सातले, मेरे लड़के का नाम चंदन सातले, मेरे भांजे का नाम रोहित सातले, शुभम सातले, शैलेंद्र सातले और मेरी मम्मी का नाम कंचन भाई सातले। मुझे गीत सुनना है मैडम
0: जी। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: इस साल फिल्म का गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, वाला गाना है मैडम
0: जी।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बजरंग चौक गांधीवाल से संतोष पटेल तुरेले बोल रहा हूँ। मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार, ये बताइए कि आप आकाशवाणी खंडवा के प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी जी, सभी प्रोग्राम सुनता हूँ। गीत कार्यक्रम, निमाड़ी भजन, तो जो 6:30 बजे कार्यक्रम आता है वो भी सुनता हूँ। मैडम
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: जी जी, मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। काम कर रहे हैं अभी, खेती की तैयारी कर रहे हैं, गहरी जुताई कर रहे हैं खेतों में।
0: गर्मी में खेती करने में आप क्या सावधानियां बरतते हैं, हमारे साथियों को बताइए।
1: गर्मी में खेती की सावधानी यही है कि खेती करने जाओ तो सवेरे से हल बखर पे जाओ, ताकि 10 बजे कार्यक्रम काम अच्छा हो जाए अपना और जल्दी आ जाओ, धूप न लगे तो पहले। जी जी,
0: ये बताइए कि आज के हेलो फ्रेंड्स में कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: आज सुनवा दीजिए बेटा पिक्चर का, जवाब जवाब होंगे जाने कहाँ होंगे।
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी।
0: जी नमस्कार।
1: हिरण्य रतनपुर से आपका निमिष श्रोता जितेंद्र सिंह गौड़ बोला था दीदी।
0: जी जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: जी दुकान है मैडम।
0: जी आकाशवाणी खंडवा के प्रोग्राम सुनते हैं?
1: सुबह 5:57 से रात 8 बजे तक लगातार 1990 से जुड़ा हूँ दीदी।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है। ये बताइए कि आज के हेलो फ्रेंड्स में आपने कॉल किया है तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: उनका सुना दीजिए, शायद मेरी शादी का ख्याल शादियाँ चले थी, चाहता हूँ।

0: हेलो जी, नमस्ते
1: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
0: जी। मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: जी प्रेम जी, क्या करते हैं आप?
0: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ। जी हाँ, मोबाइल ऐप से आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनता हूँ। हेलो फ्रेंड कार्यक्रम और जो फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ना,
1: जी
0: और जो फोन इन प्रोग्राम होते हैं, उसमें मतलब आपको बताऊं कि हर तरह के श्रोता फोन लगाते हैं, अपनी पसंद का गाना सुनते हैं और उनकी बातचीत बड़ी अच्छी लगती है।
1: जी
0: जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनने के अलावा हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप। हमें हर राज्य के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है और हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के माध्यम से ही मुझे आकाशवाणी खंडवा के बारे में जानकारी मिलती रहती है और मैं फोन लगा के पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
1: जी प्रेम जी, आज के हेलो फ्रेंड्स में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: तो मैं बताऊँ आप, शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके।
1: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

दोस्तों ये तो था हमारा आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें तकनीकी सहायता दी नीरज पाटिल, मनोज कुमार गुप्ता, बीसन दांगोरे और हरिओम पाराशर ने, और इसे प्रस्तुत किया आपकी रेडियो दोस्त सृष्टि ने। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन है, तो इसका उत्तर है प्रसून जोशी। और हमारा दूसरा प्रश्न था स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई 2026 में अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए कौन सा सप्ताह शुरू किया है, तो इसका उत्तर है फायर सेफ्टी वीक 4 मई से 10 मई तक। इसी के साथ दोस्तों अब कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति आपकी दोस्त सृष्टि यादव को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आज का ये विशेष फिल्म संगीत है आज के हमारे विशेष दिन पर, जो सभी माताओं के लिए केंद्रित है। सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

गोयल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुनते रहिए सुबह से शाम तक निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
3: आकाशवाणी खंडवा, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700142424।
1: ओ 8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424 पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
4: कूल रहो।
5: पापा लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
10: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
9: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
11: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें थी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद में भी 3 पुरस्कार मिले।
9: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि

0: प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
3: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
6: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सब किसान भाई बहनों को स्वागत है। स्वीकार करो अपनी बहन सीमा की राम राम। भाई बहनों, आज हम ईश्वर की उन्हीं कलाकृति के बारे में बात करांगा जी की ईश्वर को उस स्वरूप छे जेम प्रेम त्याग ममता न करुणा को अथाह सागर भरेल छे। आप समझी गया होगा ईश्वर की इन्हीं सुंदर रचना के बारे में। संसार में यदि कोई निस्वार्थ प्रेम करत उच्छे माया जिनका बिना इन संसार की कल्पना नहीं करी जा सकती। संसार का रचयिता कभी जन्म देने वाली इन सुंदर रचना का शब्द न बांधनु असंभव छे। इन्हीं माता का प्रेम न समर्पण का व्यक्त करनो हम शब्द न का सामर्थ्य में नहीं है। कहो जाए कि माँ की ममता को कोई मोल नहीं है, उनका चरण में स्वर्ग छे अनमोल। हमारी प्रथम गुरु का चरण में हमारो कोटि कोटि प्रणाम। बोलना चलना से लेना संस्कार जीवन का मूल्य सिखाने वाली माय छे। अपना बच्चा का दुख का बिना कहे समझने वाली हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान में रखने वाली इन्हीं माता का हम जन्म जन्म तक ऋणी रहवांगा। एक छीक कावणा पर अपनी कई रात न की नींद देने वाली माय बिना स्वार्थ का बच्चा की देखरेख में अपनो जीवन लगाई दे। कयोज भी कि ईश्वर का हम देख ही नहीं सकता, अपना स्वरूप को दर्शन उन्ना माँ का रूप में कराड़ी न संसार का अपना होना को आभास कराड़े। माता परिवार की वो आधारशिला छे जेका प्रेम न संस्कार का धागा माँ बंधी नाम एक सूत्र मरवान यानी भाई बहन दादा दादी नाना नानी काका काकी जैसा रिश्ता न ख मजबूत करना की कड़ी को नाव छे माता। भाई बहन आज का समय की बात करा तो आज माता अपना बच्चा न का उज्ज्वल भविष्य का लेना दिन रात मेहनत करी रही। अपनी इच्छा न सपना न का अपना बच्चा न का भविष्य में देखी रही। इन्हीं दोहरी जिम्मेदारी का निभावते हुए परिवार समाज न देश का विकास में अपना योगदान दे रही। हमारे जीवन में प्रकाश भरने वाले इन्हीं माता का हमारो

प्रणाम। भाई बहनों, मात्र दिवस उत्सव को दिन नहीं बल्कि सम्मान प्रेम प्रकट करने का अवसर छे। माता का ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकता, उनको निस्वार्थ प्रेम अनंत छे। आज का इन आधुनिक युग में उनकी भावना न को सम्मान करा, अपना व्यस्त समय में से उनका लेना समय निकाला। जिना घर में माता पिता खुश रहे वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करज। वेद उपनिषद पुराण रामायण भागवत जैसा हजारों ग्रंथ नमस केवल एक संदेश छे कि हम अपना बड़ा न को सम्मान करा। हमारी भारत भूमि पर स्वयं ईश्वर न जन्म लियो, कयोज भी कि माता न मात्र भूमि स्वर्ग से भी बड़ी न छे। धर्म की ध्वजा लहराना वाला देश में बढ़ता वृद्धा आश्रम कहीं न कहीं हमारा संस्कार विहीन होने का दर्शाई राज। माता पिता का ऋण का हम कभी नहीं चुका सकता, श्रवण जैसी कावड़ तो उठाई नहीं सकता, पर श्रवण जैसी मात्र पितृ भक्ति का संस्कार अपनाना अपना इन संस्कार पता का लहरावा। संस्कार से परिचय कराने वाले इन माता का अपना घर में अपना हृदय में स्थान देना, उनका प्रति अपना कर्तव्य का पूरा करा। मातृत्व दिवस जैसा दिवस नहीं तो संचार का माध्यम दिवस बनी न रह जाएगा। भाई बहनों, आज का इना विषय पर हम जितो कवा उत्तो कम अच्छे आओ सुनांच राधे श्याम चौरे ने उनका साथी नसी नारी महिमा पर योगीत।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: भाई बहनों, अब समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे समेकित कीट प्रबंधन काई छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो। समेकित कीट प्रबंधन IPM तकनीक कई छे। इना प्रश्न को उत्तर हम आपको बतावांगा कार्यक्रम का आखिरी मा। बने रहो पूरा कार्यक्रम मा हमारा साथ। भाई बहनों, उन्नत बीज उत्पादन आधुनिक कृषि की आवश्यकता छे। ई कृषि उत्पादन बढ़ाना न किसान न की आय सुधारना होना देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मा महत्वपूर्ण भूमिका निभावज। यदि वैज्ञानिक तकनीक न को सही उपयोग करो जाए तो किसान अपना उत्पादन ख बढ़ाई न कृषि आय ख बढ़ाई सकज। भाई बहनों, उन्नत बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा विकसित कराया जाए जेमा की अधिक उपज देने की क्षमता, रोग न कीट न सी लड़ने की शक्ति, न प्रतिकूल परिस्थिति का सहन करने की क्षमता रहे। ऐसा बीज सामान्य बीज न की तुलना में अधिक शुद्ध न स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण रहे। उन्नत बीज किसान न का आधुनिक लाभ प्रदान करज न कृषि उत्पादन बढ़ाना में मदद करज। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या का कारण खाद्यान्न उत्पादन की मांग बढ़ी रही। सीमित कृषि भूमि में अधिक उत्पादन प्राप्त करनु आवश्यक होई गज। इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति करना करेना उन्नत बीज उत्पादन बहुत आवश्यक छे। उन्नत बीज का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हो, साथज जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ न कई रोग न का बचाव कर लेना उन्नत बीज न को विकास जरूरी छे। उन्नत बीज उत्पादन कर लेना अच्छे भूमि को चयन करा, भूमि उपजाऊ समतल न खरपतवार रहित होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला मूल बीज को चयन करा, बीज स्वस्थ शुद्ध न अच्छे अंकुरण क्षमता वालों होना चाहिए। बीज न बुआई उचित समय न उचित दूरी पर करा ताकि पौधा का पर्याप्त पोषक न प्रकाश मिल सका। फसल की सिंचाई निराई गुड़ाई खाद न उर्वरक न को संतुलित उपयोग करा। कीट न रोग न का नियंत्रण कर लेना खेत की सतत निगरानी आवश्यक छे। बीज उत्पादन में शुद्धता बनाए रखना कर लेना रोगग्रस्त न कमजोर पौधा न ख निकाली देवा। उन्नत बीज कई प्रकार का है जैसा कि संकर बीज, एमा दुई अलग अलग किस्म न मा संकरण करी न तैयार करे जाए एकासी अधिक उत्पादन हो जाए। प्रमाणित बीज में शासकीय मानक न का अनुसार परीक्षण करे जाए। अनुवांशिक रूप से उन्नत बीज वैज्ञानिक तकनीक द्वारा सुधार कराया जाए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा न उच्च उपज किस्म न विशेष रूप से अधिक उत्पादन का लेना विकसित करी जाए। भाई बहनों, उन्नत बीज उत्पादन का कई लाभ छे जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि हो, रोग न कीट न सी सुरक्षा मिलज, कम समय में अधिक उपज प्राप्त हो, किसान न की आय बढ़ज, खाद्यान्न समस्या न को समाधान हो, कृषि क्षेत्र को आर्थिक विकास हो, सूखा न जलवायु परिवर्तन को प्रभाव कम हो। कृषि वैज्ञानिक न अनुसंधान संस्थान न का द्वारा अनेक उन्नत बीज विकसित कराया जाई राज। शासन द्वारा भी किसान न ख अनुदान न प्रशिक्षण दई न उन्नत बीज का उपयोग ख बढ़ाओ दियो जाई रज। भाई बहनों, उन्नत बीज उत्पादन तकनीक को उपयोग करी न अपनी कृषि का उत्पादन ख बढ़ावा। जैविक उर्वरक न जैविक कीटनाशक को उपयोग करी न आवण वाली जो फसल छे उको अच्छो न शुद्ध उत्पादन प्राप्त करी न अपनी कृषि आय ख बढ़ावा। भाई बहनों, इत थी आपकी न हमारी आज की बात। आव चलान जानकारी की तरफ सुनान भेंट वार्ता, विषय छे बागवानी फसल नसी लाभ। जानकारी दई राज ग्राम मोकल गांव का प्रगतिशील कृषक भाई शिवराज सिंह चौहान। तो भाई बहनों, आओ सुनान जी भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम प्रगतिशील कृषक उनके अनुभवों से अवगत कराते रहते, इसी क्रम में आज हमारे साथ है ग्राम मोकल गांव के प्रगतिशील युवा कृषक श्री सिकंदर सिंह चौहान। चौहान जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: चौहान जी, आप कितने वर्षों से खेती से जुड़े हैं और आपने इस खेती में क्या नवाचार किया?
3: मैम, खेती से हम काफी टाइम से जुड़े हैं, मतलब पापा भी खेती करते थे, अब मैं भी खेती करता हूँ। खेती से हम काफी टाइम से जुड़े हैं, अभी हम फसल के साथ साथ बागवानी खेती भी करते हैं।
2: तो आप परंपरागत सोयाबीन है, गेहूँ है, इनका उत्पादन तो लेते हैं, साथ ही आप बागवानी भी करते हैं। बागवानी करते हैं तो

0: आपने कितने एकड़ में फसल और बागवानी ली है?
1: हम फसल के साथ साथ हम बागवानी भी, जैसे अपने एक एकड़ का खेत है तो
0: जी
1: एक एकड़ में अपन क्या बागवानी भी करते हैं और साथ में बीच में फसल भी लेते हैं। सोयाबीन हुए, गेहूं हुआ, चना हुआ या वेजिटेबल हुई, ये सब करते बागवानी के साथ।
0: बागवानी और सब्जी उत्पादन, परंपरागत जो हमारे अनाज है उनका भी उत्पादन लेते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपने बागवानी में कौन कौन से उद्यान की फसलें लगाई है?
1: मैम नींबू है, जाम है, सीताफल है और केले का बगीचा है। जी
0: फलों का उत्पादन कर रहे हैं,
1: मैम।
0: कितने वर्षों से आप इनका उत्पादन ले रहे हैं?
1: मैम हमको इनको लगाए हुए करीब 6 साल से ऊपर हो गए, नींबू को और जाम और
0: जी,
1: सीताफल। केला भी हमने लगाया है।
0: इसके उत्पादन का क्या तरीका है, आप विस्तार से बताइए कैसे तैयारी?
1: जैसे पहले अपने को एक एकड़ में लगाना है, कोई सा
0: जी
1: भी पौधा, चाहे जाम हो, सीताफल, नींबू हो या कोई सा भी, अपना बागवानी देखिए। तो पहले तो उनको एक लेआउट करके पहले उनके गड्ढे कर, और उनको अपने को कितने बाई कितने पे लगाना है कि अपने बीच से फसल भी निकल जाए। पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट।
0: 12 फीट लेते हैं। ये जो जगह होती है इसके बीच में आप फसल उत्पादन भी ले सकते हैं।
1: जी मैम।
0: अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि आप जो मेजरमेंट बता रहे हैं वो क्या हर उद्यान की फसल के लिए सही
1: हर फसल के लिए चाहिए, जैसे आप सोच रहे कि मैं इसमें और फसल ज्यादा लूँ
0: है?
1: तो उसमें अपनी दूरी बढ़ा सकते हैं, जैसे 15 फीट कर सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी, 20 फीट कर सकते हैं। मतलब पौधे के भी कम लगाना हो तो दूरी 15 फीट हो जाएगी, उसके बाद 20 फीट हो जाएगी। जैसे अपन दूरी की रखेंगे ज्यादा, इससे पौधे कम लगते हैं।
0: तो इनका किस प्रकार से आप इनमें पौधरोपण करते हैं, कितनी गहराई पर आप पौधा लगाते हैं?
1: मैम एक तो एक्चुअली क्या रहता है कि इससे पहले गड्ढे गर्मी के टाइम में कर ले, 2 फीट का गड्ढा कर ले और गड्ढे को छोड़ दिए। फिर जैसे बारिश आती है उसमें पानी भराता है थोड़े, तो उसमें नमी हो जाती है। फिर जैसे बारिश चालू होती है उसमें
0: जी,
1: अपन पौधा रोपण कर देते।
0: बारिश की शुरुआत में मतलब पौधारोपण कर देते हैं।
1: हाँ, पौधा लगाने चालू कर देते हैं।
0: तो ये पौधे आप नर्सरी से प्राप्त करते हैं?
1: जी मैम, नर्सरी से भी करते हैं और खुद हम भी बनाते।
0: घर में आप जर्मिनेट करके बना। तो इसका जैसे आपने पौधे लगाए तो उस पौधे को लगाते समय क्या कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है?
1: हाँ, एक चीज तो रहते कि अपने एक तो गोबर का खाद डालो, उसमें थोड़ा सा केचुआ खाद दो और कंपोस्ट ये दो डाल दो। फंगिसाइड में कोई सा सोडोमोनास या ट्राइकोडर्मा आता है और जैविक फंगिसाइड,
0: जी,
1: उससे क्या रहता है कि फंगस लगने की टेंशन कम हो जाता है और गोबर के खाद से इसको खाद मिलता रहे।
0: इस समय जो बागवानी है इसमें जाम के और नींबू के, और अभी उत्पादन नींबू का चल रहा है, तो किस
1: जी
0: प्रकार की बढ़वार पर है आपके यहाँ पौधे?
1: हाँ मैम, अभी हमारे यहाँ फल चालू हो गए, मतलब 70% पौधों के फल आना अच्छे लगता है,
0: जी,
1: 30% भी कम आ रहे हैं।
0: तो पौधा की अच्छी बढ़वार के लिए जब पानी की खेच होती है या गर्मी का समय होता है तब उस समय आपके पास सिंचाई की क्या व्यवस्था होती
1: मैम हम उसको पानी ड्रिप से देते
0: है? जी
1: क्योंकि ड्रिप से तो पानी भी कम लगता है और
0: जी
1: पेड़ के पास ही डायरेक्ट पानी गिरता है, फल तो अपना वेस्ट पानी नहीं जाता। पेड़ के पास ही ड्रिप लगी रहती है, वहीं पर अपने डीपर लगे रहते हैं पेड़ के पास में, वही पानी पेड़ के पास गिरता है।
0: तो आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो ड्रिप से सिंचाई के किसान भाइयों को क्या फायदे हैं?
1: देखो एक तो ड्रिप से फायदा ये है कि तो पानी की बचत, दूसरी बचत ये है कि अपन जैसे लांगी से पानी देते हैं तो पेड़ को तो मिलता है, बीच में अपना वेस्ट जाता है और जो वेस्ट पानी जो जाता है एक तो वहाँ खरपतवार अलग मिलती है, तो उसमें ये समस्या रहती है। पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए अपना, ड्रिप से देते हैं तो पानी बचत होती है और
0: जी
1: पेड़ के पास में जैसे पानी बुंद बुंद गिरते हैं तो क्या करते हैं कि जमीन को वो भुरभुरी बनाते हैं जिससे उसकी जड़ी बचत चलती है, पानी भी कम लगता है।
0: ये बात तो हुई चौहान जी सिंचाई की। अब पौधा अच्छे फल प्रदान करे, उसका उत्पादन क्षमता अधिक हो, तो इसके लिए आप खाद और उर्वरक का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं?
1: एक तो मेन चीज ये होती है कि पहले पौधे को अपने व्यवस्थित कैसे बनाए, तो पौधे को व्यवस्थित बनाने के लिए उसकी टाइम टू टाइम कटिंग होनी चाहिए, उससे चूना और अपना निगम आता है वो, उससे गर्मी के टाइम ठंड के टाइम, तो इससे क्या रहता है कि वो पौधे भी अच्छी ग्रोथ भी करता है और अच्छे चलता है। उसमें केचुआ खाद डालते रहो, गोबर खाद डालते रहो।
0: मतलब आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं?
1: जी नहीं, पूरे जैविक खाद का ही
0: जी,
1: प्रयोग करते।
0: इससे क्या फायदे हैं जैविक खाद के प्रयोग से पौधों को?
1: एक तो मैम ये होता है कि एक तो अपन जैसे खाते हैं आज के समय में हर जगह केमिकल ही केमिकल आ रहा है हर फल के ऊपर, और तो हम इसमें पूरा जैविक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक चीज ये हर कोई खाना पसंद करता है, जैसे सीताफल हो, जाम हो या नींबू हो, हर आदमी खाना पसंद करता है, तो हम इसमें केमिकल का कोई सा भी प्रोडक्ट है इसमें नहीं डाल, टोटल ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। नीम तेल का ही करते हैं या हमारा पान पत्ती काढ़ा बनाते हैं, इसका स्प्रे करते हैं हर फसल।
0: अब जैसे आपने खाद और उर्वरक पौधे में दी, मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि एक पौधा कितने समय में पैदावार करके और फल देना शुरू कर देता है, जैसे नींबू का हो या जाम का हो?
1: मिनिमम 4 साल और अधिकतम 5 साल। 4 साल में इनमें फल फूल आने चालू हो जाते हैं, मतलब पहले साल में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े कम आ रहे हैं, कम आएंगे फिर 5 साल में फिर ऐसे आएंगे, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जैसे पौधे की हाइट बढ़ती जाएगी इसको फल देना चालू है।
0: जाम में भी देखते हैं कि जाम अंदर से कभी कभी उसमें इल्ली का प्रकोप होता है, तो इसके फल स्वस्थ रहे इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं?
1: नीम, हम इसके लिए नीम तेल और 5 पत्ती काढ़ा डालते हैं, तो हम स्प्रे हर हफ्ते में 2 बार करते हैं, एक नीम तेल एक बार करते हैं, एक बार में 5 पत्ती काढ़ा करते हैं। 5 पत्ती काढ़ा

0: क्या होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे अपने नीम की पत्ती एक आती है, एक दूसरा जाम या सीतापल की कोई पत्ती ले लो,
1: जी
0: एक जो अपने बेसरम आती है जिसको तामेसर बोलते हैं,
1: जी
0: एक अकाओ आता है, ये इन चार पांचों का आइटम मिला के इनको हम क्या करते हैं, उबालते हैं पानी में। 10 लीटर पानी अपने डाला तो उसको 10 लीटर को 5 लीटर करना है अपने, 5 लीटर बच जाता है तो इसको हार्मोन एक पंप में 1 लीटर मिला के स्प्रे कर। और इसके बाद भी अपने को चाहे तो अपने इसमें गौमूत्र मिला लो साथ में स्प्रे करने के लिए। इमली का प्रकोप कम है, घरेला प्रोडक्ट तो बन जाता है इससे, ना तो पत्ती के ऊपर इमली बैठती है और ना ही फल के ऊपर।
1: मतलब आप जो जैविक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, पौधा भी स्वस्थ रहता है और फल भी अच्छा आता है।
0: फल भी स्वस्थ है।
1: अब बात करते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि नींबू पर एक रोग होता है, कैंकर रोग, उसका
0: कैंकर
1: प्रकोप
0: रोग,
1: होता है। जी, तो इसके निदान के लिए भी क्या कोई उपाय किए जाते हैं कि आप पूर्णतः जैविक ही उपयोग करते हैं?
0: मैं इसके लिए तो ये होता है कि जो रेड और येलो करके वो पेपर आते हैं ग्रीन, एक तो हर एक पेड़ के ऊपर एक या दो लगा दो, और डब्बी आती है जिसमें चॉकलेट अंदर रखी रहती है, वो डब्बी हर एक पेड़ की, मतलब कि जैसे एक लाइन में 5 पेड़ है तो 5 पेड़ में से बीच के पेड़ पे या पीछे एक पेड़ के ऊपर डांग दो, तो क्या रहता है कि उससे थोड़ा मच्छर उसमें आ जाते हैं, इससे कैंकर लगने की समस्या काफी दूर हो जाती है।
1: तो कितने समय बाद तुड़ाई कर लेना चाहिए?
0: जैसे नींबू का साइज बनने लग जाता है, मतलब साइज के साथ का कि एक तो उससे मतलब कुछ नहीं रहता, साइज
1: जी
0: उसका व्यवस्थित होना चाहिए, करीबन करीबन जब 1.5 महीने बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि तो उसमें रस भी अच्छा आता है और नींबू का साइज भी बड़ा हो।
1: उसमें जब पीलापन आने लगे तभी
0: हाँ,
1: उसकी
0: पीला
1: तुड़ाई,
0: बनाने लगे
1: जी
0: जी,
1: तब उसकी तुड़ाई की जाती।
0: सीताफल में फल आ रहा है, जाम में नींबू आ रहा है,
1: जी
0: जाम के पौधे भी मेरे पास 2.5 साल की है, 1.5 से 2 साल और लगेंगे अभी फलाने में।
1: जी तो सीताफल का भी हम देखते हैं कि फल को बहुत सावधानी से तुड़ाई करना होती है पकने के बाद, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि सावधानी रखना पड़ती है, और कैसे परखते हैं कि अब इसकी तुड़ाई कर लेना चाहिए, उसको पकाने का क्या
0: मैं
1: तरीका?
0: एक्चुअली क्या रहता है कि अपन उसको पेड़ पे ही पकने देते ना तो उससे क्या होता है कि खराब हो जाता है, क्योंकि अपन उसको ट्रांसपोर्ट करना है अपने, अपन उसको कोई पके को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो एक तो इसे दब के खराब होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज आती है सीताफल जो ऑटोमेटिक दब जाता है,
1: जी
0: तो इसमें क्या रहता है कि पीलापन आ जाता है सीताफल के ऊपर, उसके जो भी आंखें रहती है सब तो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पेस्ट पे पीला बना जाता है, ऐसा लगता है कि पक गया है, तो वो पका नहीं रहता और हम उसी को तोड़ते हैं, क्योंकि एक दिन बाहर अपन जैसे बेचते हैं तो अपने पास से मार्केट में जाएगा जब तक वो पूरा पक जाएगा, हम उसे एक बॉक्स के अंदर पूरा पैक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक पक जाता है बॉक्स के अंदर ही
1: बॉक्स के अंदर पक जी।
0: बिना कार्बन का।
1: तो सीताफल में भी कोई रोग या बीमारी होने का भय रहता है?
0: नहीं, सीताफल में जैसा बीमारी का, सिर्फ उसके पत्तों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको हम जी अमृत से खत्म करते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सीताफल खराब हो रहा है।
1: तो आपने फलों का उत्पादन लिया, इसके साथ साथ आप जो बीच में सब्जी का उत्पादन लेते हैं, तो इससे अगर उस सब्जी वर्गीय फसल पर कोई कीट का प्रकोप होता है, इस पर अगर आप खाद डालते हैं और वो सब्जी वर्गीय फसल पर डालते हैं, तो इससे पौधों पर कोई प्रभाव पड़ता है? उसके जो पोषक तत्व है वो पौधा ले लेता है?
0: कुछ नहीं होता है, क्या रहता है कि हम जो अपने इसकी दूरी है अपने किसकी 10 फीट लाइन से लाइन को देखे तो हम 2 फीट जगह इधर छोड़ देते हैं, 2 फीट जगह इधर छोड़ देते, बच्चे 8 8 फीट में फसल लगाते हैं, तो अपन जिससे दवाई डालते हैं किससे अपने सब्जी पे,
1: जैविक खाद का उपयोग करते हैं, और सब्जी वर्ग की फसल हो या अनाज
0: सब्जी
1: उत्पादन हो, तब भी आप
0: सब में जैविक ही करते हैं।
1: जैविक का उपयोग करें? तो अधिकतर कहा जाता है कि भाई इससे उत्पादन कम होता है, तो आपको कुछ ऐसा
0: शुरू
1: लगा?
0: के 2 3 साल तक आपको ऐसा लगता है कि इसका उत्पादन कम होता है, उसके बाद में उसका उत्पादन व्यवस्थित होता है, और दूसरी चीज है कि उत्पादन कम हो रहा था आपको रेट ज्यादा मिलता है।
1: जैसे फल का उत्पादन ले रहे हैं, अनाज का उत्पादन ले रहे हैं, लगभग जैसे आपके यहाँ ये फल उत्पादित हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको मंडी लगाना होता है या व्यापारी आप तक पहुंचते हैं?
0: नहीं, हमें मंडी में नहीं बेचते, हम डाइसान से जैसे अपने पास से इससे फसल निकलती है ना, टोटल माल इंदौर जाता है हमारा, इंदौर में मैं इससे बहुत सारे कस्टमर बना रखे हैं, डायरेक्ट वो हमारे से सामान लेते पूरा ऑर्गेनिक।
1: जैसे आप पहले केवल अनाज उत्पादन लेते थे, आप बागवानी शुरू की, तो इससे आपको क्या फायदा हुआ?
0: मैम इससे फायदा ये हुआ कि एक तो अपनी कैंसर मुक्त भोजन कर रहे हैं, चाहे अनाज हो या सब्जी हो या फल कोई सा भी, और दूसरी चीज है कि इससे अपने को एक तो लागत कम लग रही है, बाहर से कोई ना तो पेस्ट ला रहे हैं ना कुछ ला रहे, एक तो अपने वो लागत बच रही है, दूसरी चीज है कि अब जो भी जैसा आ रहा है वो अपने पास आ रहा है, बाहर अपने को किसी को देना नहीं। दूसरी मेन चीज इससे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती जा रही है, जमीन इससे मुलायम हो रही है, कभी हमारे यहाँ तुम जमीन के भी खोद के देखोगे तो हर जमीन के अंदर तुमको 2 4 5 फीट जा खोदोगे वहां पर आपको आराम से जो अभी अन्य किसानों के खेतों में नहीं मिलेंगे आपको, अब हमारे यहाँ तुम जा भी गड्ढा करके देखोगे वहां पर आपको केचुआ अवेलेबल बराबर मिलेंगे, शायद तुम कोई जगह भी गड्ढा करके देखो।
1: जमीन है वो की उर्वरा शक्ति कायम है, और आपको ये फलों के दाम भी जो है जैविक होने के कारण
0: अच्छे मिलते हैं
1: अच्छे प्राप्त होते हैं। तो आप एक युवा कृषक है, और भविष्य में आपका क्या विचार है कि और नवाचार करके और किन चीजों का उत्पादन, जैसे आपने कहा कि मैंने केला लगाया है, इसी वर्ष लगाया, तो क्या केले का उत्पादन भी पूर्णतः जैविक आधार

0: पर कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: केले के उत्पादन के लिए भी क्या कोई विशेष प्रक्रिया है? उसमें कितने एकड़ में, जैसे आपने जाम भी लगा लिया, सीताफल भी लगा दिया, नींबू भी लगा दिया और आपने केला भी लगा
1: मैम
0: दिया।
1: एक्चुअली क्या होता है कि अपन जैसे मेरे पास हर चीज एक एक एकड़ के हिसाब से लगी हुई अभी, और मेरा प्लान कल चल रहा था कि मैं पपीता भी लगाऊं। पहले एक बार अपनी केले को सक्सेस करके देखते हैं, क्योंकि अपन इतने सारी साथ बागवानी करते हैं क्योंकि पानी तो सबको लगे,
0: जी
1: तो एक बार अपन जैसा इस बार पानी एक्स्ट्रा था अपने केले का बगीचा एक्स्ट्रा लेवाया। अब जैसे इस साल से अपन केले को और सब पूरी फसलों को पानी वैसे अपन गर्मी में दे पाते हैं और पानी अपने पास एक्स्ट्रा बचता है, तो अगली बार की उसमें पपीता भी लगाना है। एक एक एक करके मैं टोटल खेत को बागवानी में बदलने वाला हूँ, क्योंकि एक बागवानी अपने की वो सूखी इनकम है, फसल जो अपने खेत के अंदर जो निकल रही वो तो निकल ही रही है।
0: आपकी अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है, एक तो अपने फसलें भी उत्पादित हो जाती है और बागवानी से अतिरिक्त आमदनी आपको मिलती है जो कि सीधी बचत के रूप में रहती है। चौहान जी, आप एक युवा कृषक है, तो आप हमारे जो युवा कृषक भाई हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि बागवानी फसल के क्या लाभ हैं, और जो हम परंपरागत खेती करते हैं और उससे क्या लाभ है, और इनको दोनों को करने से कि युवा कृषक होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे अन्य किसान भाई?
1: अन्य किसानों में यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी के पास 5 एकड़ जमीन है, तो मैं चाहता हूँ कि करीबन 1 एकड़ में बागवानी भी लगाए और बाकी दूसरी फसलें भी लगाए, क्योंकि एक तो बागवानी इनको 4 साल में आमदनी देगी, तो उनको क्या रहेगा कि एक तो फसल भी निकलेगी और अपना पौधा भी चलते रहेगा, उसमें कोई लागत नहीं आपको लगानी। जो आप अपने खेत में दवा डाल दो उन पर डालिए, उनको आर्थिक ऐसा कुछ पोजन नहीं। अब अपने घर में खेत के अंदर गोबर खाद डाल दो, थोड़ा थोड़ा हर पौधे के पास में गोबर का खाद डाल दीजिए उसमें, और जहाँ तक हो सके कि केमिकल के प्रोडक्ट खाद वगैरह धीरे धीरे इस्तेमाल कम करें। आप कभी एकदम से पूरा नहीं करना चाहते, फिर भी उसके मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे कम करते चले
0: रसायन मुक्त खेती करें।
1: रसायन मुक्त खेती।
0: सिकंदर सिंह चौहान जी, आपने बागवानी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
1: थैंक यू।
2: भाई बहनों, अभी हम सुने रहा था भेंटवार्ता, बागवानी वाली फसल नसी लाभ जानकारी दे रहा था ग्राम मोकल गांव का प्रगतिशील युवा कृषक सिकंदर सिंह चौहान। भाई बहनों, आओ अब सुनाएं मेवाराम नायक ने उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था मेवा राम नायक ने उनका साथी नसी यो संदेश। भाई बहनों, इन लोकगीत से हम यो संदेश जरूर याद रखा कि हमको अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाउनुज, नहीं ना तापमान का कम करनुज। अब समय छे आज का कृषि समाचार न को। मध्य प्रदेश शासन न कृषक कल्याण वर्ष 2026 में किसान न पशुपालक न कल्याण कई कदम उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न कृषि न पशुपालन क्षेत्र में नवाचार डिजिटल प्रौद्योगिकी न भंडारण क्रांति का माध्यम से प्रदेश का कृषि न डेयरी उत्पादन में अग्रणी बनावना की दिशा में कई महत्वाकांक्षी योजना न की घोषणा करी। प्रदेश का आधुनिक लाभकारी न सतत कृषि क्षेत्र में बदलने का प्रयास कराया जा रहा है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का तहत प्रदेश में दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना न किसान न का आत्मनिर्भर बनावनो शामिल छे। इन्हीं पहल से किसान न पशुपालक न का जीवन स्तर में सुधार होएगा, न प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था न रोजगार में कभी मजबूती मिलेगा। मौसम की जानकारी, आज सूर्योदय 5:48 पर हुई और न सूर्यास्त शाम 6:52 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहे, न रात को न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भाई बहनों, आप समय छे आज पूछा गया प्रश्न का उत्तर को। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न पूछो तो कि समेकित कीट प्रबंधन IPM तकनीक काई छे, तो शत्रु कीट न की शत्रु न मित्र कीट न की मित्र तकनीक का साथ मिट्टी पर्यावरण न फसल की अच्छी गुणवत्ता वाली तकनीक को नाम छे समेकित कीट प्रबंधन। एका साथ आज कार्यक्रम को समय पूरा हो, आज्ञा देव राम।

अभी खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की।
1: पंडित जी पांव लागी।
2: आयुष्मान यजमान आयुष्मान, भगवान भला करे, सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी?
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।
2: अच्छा अच्छा, ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ, क्या कोई खास बात है?
1: बस एक निवेदन है पंडित जी। हाँ। असल में ससुराल जाने का इरादा है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बताए देता हूँ। जरा पत्ता देख कर अभी विचारता हूँ। यजमान
1: जी,
2: इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए हैं?
1: पंडित जी सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया, ये मेरी ससुराल की पहली पहली यात्रा होगी।
2: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी नहीं।
2: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलम्ब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
2: जरूर कोई कारण होगा, खैर कोई बात नहीं।
1: पंडित जी बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा, अब गलती हो ही गई।
2: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो आज कौन सा दिन है?
1: आज
2: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पांच, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे, मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: इसके बाद कोई योग नहीं बनता जन्मा।
1: ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
2: आयुष्मान भगवान भला करे।
1: अरे पंडित जी मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए आपकी दक्षिणा, क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना इसलिए भूला जा रहा है।
2: जजवान ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं, ससुराल से लौट कर दे देते।
1: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ।
2: भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक हो रहे।
1: मालती, पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल।
3: अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने?
1: तुम जितना आसान समझती हो, मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
3: अरे बस वो भी क्या, अरे बखानी किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का और किस दिन का निकला?
1: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
4: अरे ओ बहुरिया, का प्यारे आए गवा?
1: हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोंकी और सीधे घर आ गया।
4: अरे तो साफ साफ बतावत काहे नहीं है भैया कि पंडित जी ने

0: समय की मुहूर्त की बात की है। अरे ये बच्चन की तरह पवारा काहे गाय रहे हैं?
1: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी हैं। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूर्व ही हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए। विलंब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता।
0: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया? अरे बहू देख, कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या, ठीक एन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया।
1: ए मालती, कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
2: हाँ, क्या वे लोग आपको समझे नहीं है क्या?
1: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
2: अच्छा। अब

0: कोई जोक नहीं बनता।
1: तो इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया। अरे बहू देख कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या ठीक, ऐन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया।
2: ए मालती कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं।
3: हाँ, क्या बेनोग आपको समझे नहीं है क्या?
2: अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है।
3: अच्छा?
2: अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत, समझी? अब कोई आसान नहीं मुझे समझना।
1: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो।
3: माँ जी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
2: अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए।
3: अच्छा जी ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ही ना, दो तीन दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा।
2: हाँ हाँ, तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने महके वालों पर।
3: ना हो?
2: मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
3: जाइए जाइए जी भर कर देख लीजिए, अरे कहीं महंगी ना पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा।

0: बस में फंस गई बाम घर तीन खीसे न काड़ो घर चलो। अरे भैया ए सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
1: गोपालपुर गांव
0: जी?
1: अरे भैया गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
0: भाई साहब यहीं कहीं गोपालपुर गांव है। अरे वहीं तो मेरी ससुराल है, असल में रास्ता भूल गया था इसलिए आपसे पूछा।
1: स्टेशन के कौन तरफ है यू गाँव?
0: स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ।
1: राम राम राम। अरे भैया तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
0: पश्चिम?
1: अब ऐसा करो पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है।
0: अरे
1: वहीं किसी से पूछ लीजिएगा।
0: अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या?
1: भैया तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया।
0: अरे राम राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है।
0: भाई साहब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं?
1: वाह भाई वाह, मैं क्यों लौटूं? क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है? आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब?
0: अरे भैया यही बात तो मेरी बीवी मालती भी कहती है, आप कैसी बातें करते हैं। सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं?
1: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी क्या कहती है, मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाए दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
0: हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था, ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। ना कोई सवारी ना कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। अब मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं आगे नहीं जाऊंगा, यही किसी से पूछ लेता हूं, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब सुनिए।
2: हाँ कहो।
0: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
2: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो, जाना कहाँ है?
0: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गाँव क्या गोपालपुर ही है?
2: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सकल से लागत हो, पहले पहल आए हो।
0: जी हाँ जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है।
2: अच्छा अच्छा, गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है?
0: जी
2: है? हमरी सकल का देख रहे हो, शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे बाप रे, तो बड़ा सन्नाटा। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे कुत्ते भूक रहे हैं, कहीं काट न लें। दीनदयाल व्रत संभारी, हरे नाथ मन संकट भारी।
1: ए नाथ, आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा।
0: भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर न जब नाम सुनावे।
1: अरे भाई कोई है, नाथ मारे इनको।
0: अरे भैया कहाँ चले जा रही?
1: अरे जीजा जी, अरे जीजा जी आप।
2: अरे बड़ा गजब हो गो, अरे बड़ा अनर्थ हो गो। अरे जीजा जी का पुत्र काज लिया।
0: अरे भैया आप तो हमका पहचान गए, इस ससुर कुत्ता नहीं पहचान पाए, इतने कुकुर पाले रहो। देखो काट लीस, खून निकल रहा है।
3: अरे बेटा प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
0: अरे बाबूजी,
3: कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। देखे भैया कहाँ काट लिया।
0: देखो बाबूजी पाओ माँ
3: चोरे तीरा, कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना अनर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला ला।
2: अरे अब वैद्य जी आकर क्या करेंगे बाबूजी? अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई। अरे सुई वो भी लगेगी अस्पताल में कल सवेरे।
0: मर गए सुई। अरे बोली अम्मा, अरे ससुराल आए के ससुर कुकुरों का बतौर लीज। अरे मालती, तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना, तो मेरी मिमती मारी गई थी जो 3 दिन की छुट्टी रही थी, पंडित जी से साल पूछ के चले आए थे हुआ दिशा भरम। उसके बाद पश्चिम की पद यात्रा, उसके बाद पूरब की पद यात्रा, उसके बाद इस ससुर कुकुर कांड। अरे अब एक एक कई के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे वारे मेरी ससुराल यात्रा।

तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितनी उड़ान

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं वार्ड मुरहरी के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुके

0: है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो अप्लीकेशन आए थे वो 7,128 अप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा, कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पद विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आए। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आए, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर पीएमएस पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका एनपीए नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेमलता सूरवंशी।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
4: 2024 में।
3: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका

0: हुआ था?
1: 10,000 का
0: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
1: जनरल स्टोर पे।
0: तो उससे फायदा है आपको?
1: जी।
0: क्या लाभ मिला आपको उससे?
1: उससे भी हमारी छोटी दुकान होती उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाते जा रहे, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। पीएम स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी।
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा सदन कुमार मालवी।
0: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
2: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
0: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
2: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इसमें। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया, तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना, योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
3: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना कोलेन्द्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

समय ओमकारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

0: की आवाज में आप सुन रहे थे मुंबई सागा फिल्म का ये गीत। मनोज मुंतशिर और ने इस गीत को लिखा था और तनिष्क बागची ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

मीका सिंह और साथियों के आवाजों में आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म का गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और A.R. रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं

0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने

0: समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

के लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये रास्ते हैं प्यार के, यह फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुन रहे हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत से सजाया था इस गीत को रवि ने। यह है भीगी रात फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं।

भीगी रात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी रोशन ने। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर उषा मंगेशकर की हैं, फारूक कैसर ने इस गीत को लिखा है और जी एस कोहली ने धुन बनाई है।

0: फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
0: भारत के holistic development के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें Art of Living जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
1: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
0: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
1: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
0: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
1: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century

0: progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मा।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेंद्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था। हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले तिहारे

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की गिरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं है, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया, दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल। यादें जिनमें दर्द भी है, तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

0: आज के छायागीत में थे तलत महमूद के नगमे। फिल्मों के नाम,
1: तेरी आँख के आँसू पी जाऊं,
0: फिल्म जहां आरा,
1: शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम,
0: फिल्म फुटपाथ,
1: मेरे दिल कहीं और चल,
0: फिल्म दाग।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।